फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह बैतूल केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की षष्ठी तिथि, तदनुसार दिनांक 27 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है।

0: श्रोताओ, जगजीत सिंह के स्वर में अभी आपने सुना ये भक्ति नगमा। इसी भक्ति गीत के साथ कार्यक्रम भक्तिधारा अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बैतूल है, प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।
1: निर्धन हो या सधन, सभी को अपना बचपन याद आता है। वो उम्र बड़ों से लाड़ प्यार तो कभी फटकार पाने की होती है। बालक जब कभी कोई गलती कर देता है तो माँ उसे कहती है, ये तुम्हारी पहली गलती है, अतः क्षमा कर रही हूँ, अब करोगे तो पापा से बतला दूंगी। बालक स्वीकृति में सिर हिला देता है और अपने कक्ष में चला जाता है। बड़ों के जीवन में झांक कर देखा तो वहां सब उलट पलट है। गलती पकड़ी जाने पर भी आजकल के बड़े उसे अपनी गलती मानते नहीं है, फलतः क्षमा कर देने या क्षमा याचना की बात ही खत्म हो जाती है। ऐसे लोग राजनीति के क्षेत्र में बहुतायत से पाए जाते हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में अभी भी कतिपय समाजों में ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने एक बार गलती की और क्षमा भी मांगी है। संसार में क्षमा कर देने वाले और क्षमा याचना करने वाले लोग हर वर्ग में जीवित हैं, शायद इसीलिए संसार चल रहा है। क्षमा मांगने या करने का क्रम सनातन है। यहाँ हजारों वर्ष पूर्व से लोग त्रुटियां कर रहे हैं और क्षमा पा रहे हैं। ये शत प्रतिशत उचित मार्ग है वर्तमान संसार का। महापुरुष बुद्ध के समय काल का एक प्रसंग है। देश में भीषण अकाल पड़ा, आम तो आम खास आदमी भी अन्न के अभाव में तड़पने लगे। एक संत कई दिनों से भूखा फिर रहा था।

0: था, उसने एक सूखे वृक्ष के नीचे दो महावतों को खाना खाते हुए देखा। वे एक कपड़े पर कुछ रोटियां रखे हुए थे, एक बाल्टी में थोड़ा सा पानी भी था। वे सूखी रोटियां आनंद से चबा रहे थे, बीच बीच में चुल्लू में पानी लेकर गले में उतारने की जुगत भी बना रहे थे। संत की दृष्टि में भोजन और जल दोनों झूठे और अग्राह्य थे, किंतु उसे अपना जीवन बचाना था, अतः उसने वात्सल्य पूर्वक दो रोटियों की याचना की। महावतों ने मन को विशाल करते हुए दो रोटियां संत को दे दी, साथ में याद दिलाया कि महाराज ये झूठी हैं, क्षमा करना। संत कुछ न बोला, वहीं बैठ गया और आगामी दिनों की साधना को ध्यान में रखते हुए रोटियां खाने लगा। कुछ समय बाद संत उठा, महावतों को धन्यवाद दिया और चलने लगा। तब वे बोले, महाराज पानी तो पी लीजिए। इस बार संत ने लज्जाते हुए कहा कि नहीं, पानी नहीं पीऊंगा, वो झूठा है। उत्तर सुनकर महावत जोर से हंस पड़े, फिर कहने लगे, झूठी रोटी तो खा ली, फिर झूठा पानी क्यों नहीं पीते। संत शुद्धा तृप्ति से ज्ञानाचार का आलोक पा चुका था, अतः सवात्सल्य बोला, शरीर की साधना आगे भी नियमित रखने के लिए आहार आवश्यक हो पड़ा था, अतः एक बार गलती कर स्वेच्छा से अपवाद मार्ग पर चला गया, अब दूसरी त्रुटि करूंगा तो ईश्वर माफ नहीं करेंगे, शुद्ध पानी कुछ ही क्षणों बाद आगे सरोवर में मिल जाएगा। संत के उत्तर से महावतों को सन्मार्ग मिला ही, साथ ही एक समस्या का समाधान भी हो गया कि त्रुटि एक बार माफ की जा सकती है, हर बार नहीं, और जो त्रुटि किसी बड़े और कल्याणकारी हेतु के लिए की जाती है उसे तो सौ सौ हाथों से माफ कर देना चाहिए। तीसरी बात ये कि अपवाद मार्ग भी एक बार क्षम्य माना गया है।
1: सुनिए कार्यक्रम महिला जगत सोमवार से शनिवार सुबह 10:30 पर, जिसमें होगी मुलाकातें नित नए मेहमानों से सोम बुध गुरु और शनिवार को। साथ ही किचन टिप्स, पाक विधियाँ, प्रेरक व्यक्तित्व और जीवन शैली। मंगलवार और शुक्रवार को सखियों की पसंद, जिसमें आपको सुनवाएंगे आप ही के पसंद के चंद गीत।
2: पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में।
1: सुनिएगा जरूर आपका अपना कार्यक्रम महिला जगत FM 103.1 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति, स्वर है भूपेंद्र सिंह, श्रीकांत पारगांवकर और साथियों के।

ननिहाल से अयोध्या लौटते हुए भरत को चारों ओर अपशकुन दिखाई देते हैं। नगरवासी मिलते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं, मात्र अभिवादन कर चल देते हैं। महल में पहुंचकर भरत को माता कैकेयी अति प्रसन्न दिखाई पड़ी। पिता, भाइयों तथा अन्य माताओं का कुशल पूछने पर बोली, हे तात, मैंने मंथरा की सहायता से सारी बात बना ली थी, किंतु विधाता ने बीच में ही बात बिगाड़ दी। राजा देवलोक को सिधार गए। भरत के कानों और हृदय में माता के वचन शूल की भांति चुभे। करुणा करते हुए वे जमीन पर गिर पड़े। पिता के स्वर्गवास के क्षणों में वे उनके पास नहीं थे, शोक मग्न पुत्र को अपना सिर धुनने के लिए इतना ही कारण पर्याप्त था। माता से संपूर्ण घटनाक्रम का विवरण सुनकर भरत क्षण भर को पिता का मरण भूल गए। जो अनर्थ हो गया था उसका कारण उन्होंने स्वयं अपने आप को मान लिया। माता ने जो सांत्वना भरे वचन कहे वो उन्हें अपने घाव

नमक के समान लगे, मानो रिश्ते घावों को अंगार छू गया हो। पापिनी, तूने सारे कुल का सर्वनाश कर दिया। यदि तेरी यही नियत थी तो जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? जब तूने मन में ये ठाना तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए?

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। पेश है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी। कलाकार है तिलक राज मेहरा और साथी।
1: अरे भोज

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी। सर है तिलक राज मेहरा और साथियों के।

इसी के साथ कार्यक्रम लोकरंजनी अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बैतूल है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में दो नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित कर दिया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्तार शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि उसकी ईरान पर उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित

अगर समझौते में हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। एफआईएच पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराकर करारी शिकस्त दी। मैच के पहले क्वार्टर में लंदन में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह की गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। सातवां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 103.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आप सभी को हमारी आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से अवगत कराने का। लीजिए पेश है कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे क्लासिक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोके से, सूचनात्मक कार्यक्रम सुबह सवेरे जिसे आप सुन सकेंगे प्रातः 7:50 पर। सुबह 8:30 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम हेलो एफएम बैतूल। सुबह 9 से 10 तक आनंद ले सकेंगे विविध भारती सेवा के मनोरंजक कार्यक्रम का, विविध भारती के मुंबई केंद्र से। जिले की चिट्ठी कार्यक्रम सुनेंगे सुबह 10 जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 10:05 पर होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

कार्यक्रम महिला जगत, इसे सुनेंगे सुबह 10:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा लघु उद्योग एवं महिला स्वरोजगार। मुलाकात में चर्चा होगी महिला स्वरोजगार एवं SHG इस विषय पर, साथ ही बागवानी पर सुझाव और कुछ फिल्मी गीत। इसके पश्चात सुबह 11 से शाम 5:30 तक आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के मनोरंजक कार्यक्रम। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज की बात का विषय होगा युवाओं के लिए स्टार्टअप और स्वरोजगार के अवसर, स्तंभ में सेहत मंत्र, तनाव और चिंता कम करने के तरीके, साथ ही अवसर में प्रतियोगी परीक्षाएं, नए कोर्सेज, छात्रवृत्ति और कुछ फिल्मी गीत। लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत होगा शाम 6:05 पर, कलाकार होंगे पन्नालाल गुजेले। शाम 6:30 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम सबरस का आनंद लेंगे शाम 6:50 पर। शाम 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। कार्यक्रम बातें नई गीत नए, इसे सुनेंगे रात्रि 8:00। रात 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम युगल गीत।

सेवा के कार्यक्रम होंगे रात 9 से 10 बजे तक आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। रात्रि 10 बजे सुनिएगा कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम सुगम संगीत सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। कलाकार होंगे अहमद हुसैन एवं मोहम्मद हुसैन। रात 11 बजे हिंदी में और रात 11:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

से। श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर। गृह मंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित सेवा भारत टैक्सी का गुजरात में करेंगे शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आतिथ्य में होगा विशेष कार्यक्रम। और आज भोपाल इंदौर समेत 43 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा दल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ बातचीत करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वे वहां भारत वंशियों से भी मिलेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल्स पर इसका सीधा प्रसारण होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग और अवैध तस्करी विरोधी दिवस पर कल केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने देश को नशे के खतरे से बचाने के लिए तैयार किए गए विजन डॉक्यूमेंट ऑन नारकोटिक्स कंट्रोल का भी शुभारंभ किया। संबोधन में अमित शाह ने कहा कि देश नशे के खिलाफ लड़ाई के बेहद निर्णायक मोड़ पर खड़ा है।
1: मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, नार्को टेररिज्म इको सिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
0: समान नागरिक संहिता यूजीसी विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए अध्ययन और परीक्षण संबंधी उच्च स्तरीय समिति की बैठक कल नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में हुई। समिति की अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विधेयक के प्रारूप के साथ ही विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति समेत अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति सदस्य सचिव अजय कटेसरिया ने बताया कि समिति की रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग अंतिम चरण में है। समिति की रिपोर्ट के 2 भाग होंगे, जिसमें पहला भाग समिति की अनुशंसाओं का और दूसरा भाग समिति द्वारा किए गए जन परामर्शों से संबंधित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज से 2 दिवसीय दौरे पर बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज शाम को संसद पॉइंट को देखेंगे। इसके बाद ग्राम पंचायत कुकरू में रात्रि चौपाल में शामिल होंगे। वे गांव वालों से बातचीत भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। अगले दिन सुबह 6:30 पर सनराइज और बुज पॉइंट पर मेडिटेशन करेंगे। फिर सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित गतिविधियों का अवलोकन भी करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन परिसर में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में कई निर्णय लिए जाएंगे। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस की प्रदेशवासियों सहित उद्यमियों को शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। श्री कश्यप ने कहा है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम भारत की अर्थव्यवस्था की सशक्त आधारशिला है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जैसे अभिनव आयोजनों ने प्रदेश में एमएसएमई स्टार्टअप्स और निवेशकों के लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं। इससे प्रदेश में निवेश बढ़ा है, रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और स्थानीय उद्यमों को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल लोकतंत्र सेनानी स्मृति दिवस के अवसर पर रविन्द्र भवन में आयोजित लोकतंत्र सेनानियों की प्रादेशिक सम्मेलन में कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को सरकार स्पेशल ट्रेन से तीर्थ दर्शन कराएगी, साथ ही लोकतंत्र सेनानियों के इलाज का सारा खर्च सरकार उठाएगी।
1: लोकतंत्र सेनानियों के योगदान के शिलालेख उनके निवास क्षेत्र के आसपास लगाने के भवन, पार्क या मार्ग का नाम रखने के लिए मैं सहमत हूँ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और लोकतंत्र सेनानियों के इलाज के लिए जो खर्चा लगेगा सरकार देने के लिए तैयार रहेगी। हमारे लोकतंत्र सेनानी अपने राज्य के अंदर कई जगह छोटे छोटे स्थान पर भी रहते हैं और ऐसे में कभी कोई गंभीर बीमारी पड़ी और वहाँ राज्य के उस अस्पताल में इलाज नहीं है तो हमारी एयर एम्बुलेंस निःशुल्क लेकर के आएगी और उनका इलाज कराएगी।
0: प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से के 15 जिलों में एंट्री करने के बाद मॉनसून ठहर गया। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक मॉनसून आगे बढ़ा तो पहले यह भोपाल उज्जैन संभाग में पहुंचेगा, आखिर में ग्वालियर चंबल में दस्तक देगा। प्रदेश में मॉनसून 24 जून को पहुंचा था। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 2-3 दिन में मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों में मॉनसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां बन रही हैं। इसके असर से आज भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर समेत 43 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारे शिकस्त दी। लंदन के ली वैरी हॉकी सेंटर में खेले गए मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, चुकराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। सातवां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए जोधपुर और चेन्नई के बीच 27 जून से साप्ताहिक समय स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन पश्चिम मध्य रेलवे की भोपाल मंडल के रोठियाई, गुना, बीना, भोपाल और इटारसी स्टेशन से गुजरेगी। खंडवा में साइबर अपराधों से बचाव के लिए पुलिस का सेफ क्लिक 2.2 अभियान लगातार जारी है। अभियान के तीसरे दिन विशेष साइबर जागरूकता कार्यक्रम

आयोजित की है। वर्षा काल को देखते हुए आगरमालवा कलेक्टर के आदेश पर 24 घंटे संचालित होने वाला जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। सतना जिले में जिला प्रशासन और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में कई जगह नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक सहित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। निंडौरी में कल से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत जिले के 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इंदौर में मध्य प्रदेश गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल रिक्त इंदौर ने कॉलोनियों के निवासियों के लिए समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया। गुना में कल राजस्व और नगर परिषद के संयुक्त अमले द्वारा संचालित कोचिंग संस्थानों का सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है FM 103.1 MHz। पेश है क्लासिक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोके से। इस कार्यक्रम में हम पहला गीत सुनवा रहे हैं शमशाद बेगम की आवाज में। गीतकार है राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार है SD बर्मन और फिल्म का नाम है बहार।

0: श्रोताओं, क्लासिक नगमों का सफर आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं फिल्म 20 साल बाद से ये गीत, जिसे लिखा है शकील बदायूनी ने, संगीत से संवारा है हेमंत कुमार ने और इस गीत को गाया है हेमंत कुमार ने।
1: बेकरार करके

आइए सुनते हैं मुकेश के स्वर में फिल्म अनाड़ी से ये गीत। संगीत है शंकर जयकिशन का, बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने।

कार्यक्रम यादों के झरोके से में अगला गीत शब्द रचना है शैलेंद्र की, मन्ना डे और आशा भोसले का गाया, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया, फिल्म श्री 420 से ये गीत।

चलिए कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म आरजू से ये गीत, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है अनिल बिस्वास ने, गायक है तलत महमूद।

क्लासिक फिल्मी गीतों के सफर में सुने ये गीत। स्वर है गीता दत्त के, शब्द हैं शकील बदायूनी के, संगीत है हेमंत कुमार का और फिल्म का नाम है साहिब बीवी और गुलाम।

इस कार्यक्रम में चलते हैं अगली पेशकश की ओर, फिल्म दिल एक मंदिर से। आवाज है लता मंगेशकर की, संगीतकार है शंकर जयकिशन, गीतकार है हसरत जयपुरी।

0: श्रोता, इसी गीत के साथ कार्यक्रम यादों के झरोके से यहीं संपन्न होता है। FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। पेश है कार्यक्रम सुबह सवेरे।
1: सुबह सवेरे
0: कार्यक्रम सुबह सवेरे में सूचना इस प्रकार है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 1,64,874 बच्चों को दी जाएगी पोलियो की खुराक। जिला जनसंपर्क कार्यालय बैतूल से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 28 जून रविवार को आयोजित किया जाएगा। प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर जगदीश घोरे ने बताया कि प्रथम दिवस बूथ पर और दूसरे एवं तीसरे दिन 29-30 जून को घर घर जाकर 0 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। जिले में 0 से 5 वर्ष तक के अनुमानित कुल 1,64,874 बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। कुल 1,909 टीकाकरण बूथ बनाए गए हैं। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जिले के क्रॉसिंग पॉइंटों में 88 बूथ बनाकर दवा पिलाई जाएगी। साथ ही जिले में हाई रिस्क एरिया, ईंट भट्टे, निर्माण स्थल, मेले, झुग्गी झोपड़ी, घुमक्कड़ आबादी स्थल को भी चिन्हित कर 21 मोबाइल टीमों के द्वारा पोलियो की दवा पिलाने का कार्य किया जाएगा। दवा पिलाने के लिए टीकाकर्मी एवं सुपरविजन के लिए सुपरवाइजरों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि पल्स पोलियो की दवा पीने से कोई भी 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे वंचित न रहे। अब आइए सुनते हैं ये देशगान।

0: सूचनात्मक कार्यक्रम सुबह सवेरे।
1: सुबह सवेरे
0: ये आकाशवाणी बैतूल है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: डेटा आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर दो बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
3: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी 0 कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से

0: जुड़ चुके हैं, जहां हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है, लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
2: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्साकर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फितार ने कहा कि इस बार अमरीकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
3: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
4: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
5: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
6: हमारे यहाँ दो टू टू कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग।

0: विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
3: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथी होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप की ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
2: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीरअर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, AI को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे AI आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्तार, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्ता ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ $12 अरब का आंकड़ा।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ

0: 5-age men's pro league hockey, India thrashes Pakistan 7-1 in London last night. And in football, two-time champion Uruguay crash out of FIFA World Cup after losing to Spain 1-0. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं. प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो एफएम बैतूल.
2: हेलो एफएम बैतूल.
3: हौसला रख अपने इरादों में, बुलंदी को पाना है. ना हारना है ना लौटना है, बस केवल मंजिल को पाना है. दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ करते हैं आगाज आज के हमारे कार्यक्रम हेलो एफएम बैतूल का. और आज आपके साथ मैं हूं आपका रेडियो दोस्त संदेश खड़तकर. तो स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार और आइए सुनते हैं हमारे आज के पहले कॉलर को. हेलो एफएम बैतूल.
4: नमस्कार सर जी.
3: नमस्ते जी. कौन बोल रहे हैं?
4: जम्मू से केशव शर्मा जी.
3: जी केशव जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में. और आज कौन से गीत की फरमाइश लेकर आए हैं केशव जी?
4: महबूबा फिल्म का गाना सुना दीजिए. चलो री डोली, चलो री चलो री, किसी प्यासे परदेसी के आने से पहले. ये वाला गाना सुनना है तो साथ में कुछ साथी हैं
3: जी.
4: मैडम है मेरी श्रीमती सुषमा रानी है, बच्चियां हैं मेरी अंशु शर्मा है, साक्षी शर्मा है, भाई सतपाल शर्मा है
3: जी.
4: और कुछ मेरे दोस्त हैं यूपी से हैं विजय पांडे जी
3: जी.
4: राजस्थान से हैं पूर्ण वर्मा जी और हिमाचल से हैं गोल्डी जी.
3: बिल्कुल केशव जी.
4: सर ये प्रोग्राम आना कब है? शनिवार और एतवार को ही आता ना
3: जी? केशव जी, इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है दो भागों में. पहला भाग जो है वो शनिवार के दिन 8:30 से 9 बजे तक होता है और दूसरा भाग जो है वो रविवार के दिन 10:05 से 11 बजे के बीच होता है.
4: ठीक है सर.
3: बिल्कुल. तो हम आपको सुनवाते हैं केशव जी आपकी पसंद पर ये गीत.

0: हेलो एफएम बैतूल।
1: हेलो।
0: हाँ जी,
1: हेलो एफएम बैतूल।
0: हाँ जी, हेलो एफएम बैतूल।
1: जी सर जी नमस्ते।
0: नमस्ते जी।
1: जी मैं नरेश प्रजापति, रामनगर गुना मध्य प्रदेश से।
0: जी नरेश जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।
0: जी
1: और कैसे हैं आप और कैसा है मौसम बैतूल मध्य प्रदेश का?
0: हम तो बहुत अच्छे हैं और मौसम भी जो है वो खुश मिजाज हो गया है, थोड़ी ठंडक
1: यहाँ
0: इस क्षेत्र में आई है।
1: मस्त है
0: जी
1: और बारिश हो गई है तो मौसम में बिल्कुल ठंडक आ गई है, मानसून आ गया है।
0: बिल्कुल राहत मिली है काफी लंबे समय बाद।
1: जी जी
0: और आज कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: बिल्कुल सर, गीत सुनना है बरसात से ही रिलेटेड सॉन्ग है, आई मिलन की रात।
0: जी
1: एक गीत है, सावन का महीना आया है घटा।
0: जी
1: बाकी अभी सावन का महीना नहीं आया लेकिन घटा से पानी जरूर आ रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और यही तो वक्त होता है ऐसे गाने सुनने का।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बरसात का ये मौसम रहता है
0: जी
1: और इस तरह के गीत सुनने का आनंद ही दोगुना बढ़ा देता है।
0: तो नरेश जी, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

0: जी श्रवण जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। श्रवण जी, कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: ये किशोर कुमार जी की आवाज में है, गंगा की लहरें फिल्म की से।
0: जी बिल्कुल, हम आपको आपकी पसंद पर गीत सुनवाएंगे। क्या करते हैं आप श्रवण जी?
1: मैं सिक्योरिटी में काम करता हूँ सर, सिक्योरिटी का काम है मेरे पास।
0: जी, और आप हमारे कार्यक्रम सुनते रहते हैं?
1: हाँ सर, वो तो मैं गीत सुनने का बहुत शौकीन हूँ। मेरे यहाँ पे है कि बैटरी वाला भी है, रेडियो और ऐसा भी है लाइट वाला।
0: जी,
1: ये तो अमीन शहानी जी के जो प्रोग्राम चलते हैं, जब से मैं गीत माला बिना गीत माला
0: जी
1: तो सुनते हैं शुरू से।
0: और श्रवण जी, आप अपने दोस्तों के परिवारजनों के नाम लेना चाहेंगे?
1: परिवार में पत्नी है मेरी सरिता वामनकर, एक बेटी है रंजना, एक बेटी प्रियंका है, एक बेटी अंबिका, एक पुत्र है विवेक वामनकर।
0: बिल्कुल, तो श्रवण जी, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

0: हेलो एफएम बैतूल।
1: जी सर नमस्कार,
0: नमस्ते जी
1: मैं आपका नियमित श्रोता सुनील झा बोल रहा हूँ, भोपाल मध्य प्रदेश से। जी
0: सुनील जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: सर धन्यवाद।
0: और कैसे हैं सुनील जी अभी आप?
1: बहुत बढ़िया है सर,
0: और आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: अच्छा चल रहा है सर। अभी तो खैर अब तो थोड़ा

0: शादी भैया कम हो गया, तो इसलिए थोड़ा कम हो गया अभी तक तो ठीक चल रहा था
1: जी।
0: और अभी थोड़ा बारिश भी हो गई है, थोड़ा मौसम भी ठंडा हो गया है
1: जी जी, राहत मिली है काफी।
0: हाँ हाँ गर्मी से थोड़ा उमस थी, अब थोड़ी राहत मिल गई है
1: जी
0: सर। मैंने कहा चलो आज फोन लगाया जाए सर।
1: बिल्कुल, और भोपाल का मौसम जो है वो बड़ा खुशनुमा होता है
0: जी जी जी हाँ, बरसात थोड़ी हो जाती तो थोड़ा अच्छा, पहाड़ी एरिया में थोड़ा अच्छा लगता है,
1: जी। गुलाबी
0: हरियाली छाए।
1: गुलाबी ठंड जो है
0: जी जी जी
1: बिल्कुल।
0: जी
1: और आज कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
0: सर उसका फिल्म बेगाना फिल्म का है,
1: जी
0: मतलबी है लोग यहाँ मतलबी जमाना।

0: हेलो एफएम बैतूल।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्ते जी,
1: मैं सुरेश कुमार सारथी बोल रहा हूँ सर, छत्तीसगढ़ बेमेतरा जिला से।
0: जी सारथी जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हैं सर
0: जी। और आज जी कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: जी सर, फिल्म का नाम है सर प्यासा सावन का, सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज में है सर
0: जी।
1: मेघारे मेघारे मेघारे मेघारे मत पर

0: तो श्रोताओं, ये था इस हफ्ते का फोन इन कार्यक्रम हेलो एफएम बैतूल का पहला भाग। इसका अगला भाग आप सुनेंगे कल यानी रविवार सुबह 10:05 पर। तब तक कार्यक्रम से इजाजत दीजिए आपके रेडियो हमसफर संदेश खड़तकर को। नमस्कार।
1: हेलो एफएम बैतूल,

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो एफएम बैतूल। ये आकाशवाणी बैतूल है। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
4: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
4: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती से आप सुन रहे हैं चित्रलोक।

0: जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि हर रोज विविध भारती आपका हम सफर है। टहले यादों की वादियों में संग संग, दिन में 11 बजे सुनते हुए रंग तरंग,
1: दिल में एक लहर सी,
0: ऐसे गाने जो चुरा ली आपका दिल, दिन में 12 बजे यादों की महफिल।

0: एक बजे एक अनूठी इबारत की डगर सुरीला सफर
1: तुम आ गए।
0: घड़ी की सुइयां जब बजाती हैं ढाई तो बजती है सदाबहार नगमों की शहनाई। जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है क्योंकि हर रोज विविध भारती आपका हम सफर है। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा आपका जीवन संगीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज एक खास दिन है, एक संगीतकार की याद का दिन, और वो संगीतकार हैं पंचम।

यूं तो आज के फनकार कार्यक्रम में हम आपको किसी गीतकार, संगीतकार या किसी कलाकार की पूरी जीवन यात्रा बताते हैं। हम ये बताते हैं कि वो कहाँ पैदा हुए, कैसे उनकी परवरिश हुई और कैसे उनका करियर शुरू हुआ और फिर वो कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। लेकिन आज है पंचम दिवस और पंचम के बारे में हम ये मानकर चलते हैं कि आपको तमाम जानकारियां विविध भारती के इससे पहले के आज के फनकार कार्यक्रमों के जरिए मिल गई होंगी। आज हम आपको सुनवाएंगे दास्ताने पंचम, यानी कैसे पंचम ने अपने गानों की धुनें बनाई। उनके जीवन से जुड़ी बड़ी दिलचस्प घटनाएं भी हम आपको बताएंगे और इसके अलावा पंचम की रचना प्रक्रिया में झांक कर भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दास्ताने पंचम। दरअसल जाने माने संगीतकार आरडी बर्मन का नाम तो पंचम रख दिया गया। वो सचमुच सुरों से सराबोर भी रहे, लेकिन सचिन देव बर्मन बड़े व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने पंचम को कोलकाता में अपनी मम्मी के

पर रख दिया था, यानी दादी जी ने पंचम की परवरिश की। सचिन देव बर्मन को ज्यादा पता नहीं होता था कि पंचम कर क्या रहे हैं। एक बार एक स्कूल के फंक्शन में एस डी बर्मन को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुला लिया गया, और जब स्पेशल गेस्ट के तौर पर वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि पंचम हारमोनिका बजा रहे हैं। उन्हें अपने बेटे की इस प्रतिभा को देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। एक और दिलचस्प घटना हुई थी, एक स्कूल के स्पोर्ट्स फंक्शन में इनाम बांटने के लिए एस डी बर्मन को बुलाया गया। सचिन देव बर्मन इनाम बांट रहे थे तो ऐलान हुआ साइकिलिंग के लिए अवार्ड राहुल देव बर्मन को। अब उनका बेटा ही उनके सामने खड़ा था और साइकिलिंग के लिए वो उसको पुरस्कार दे रहे थे। अगले दिन उन्होंने पंचम को अपने पास बुलाया और बोला, कब से तुम साइकिलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो? पंचम ने जवाब दिया, 8 दिन से। उन्होंने पूछा, ये बताओ तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? पंचम ने जवाब दिया, आपसे बेहतर म्यूजिक डायरेक्टर बनना। ये जवाब सचिन देव बर्मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पंचम को अलग अलग साज सीखने के लिए प्रेरित किया और ब्रिजेन बिस्वास के पास भेज दिया तबला सीखने के लिए। इसके अलावा पंचम को भेजा गया उस्ताद अली अकबर खां और आशीष खां के पास सरोद सीखने के लिए। कई ऐसे गाने हैं जिनमें पंचम ने खुद सरोद बजाया है। एक बार सचिन देव बर्मन इसी तरह से छुट्टियां बिताने के लिए अपनी माँ के पास कोलकाता गए। उन्होंने राहुल देव बर्मन को बुलाया और उनसे कहा कि जरा अपनी मार्कशीट दिखाना। मार्कशीट देखकर वो आग बबूला हो गए, पढ़ाई में इतने कमजोर। उन्होंने तय किया राहुल को मुंबई ले जाएंगे, क्योंकि उनकी भी अब उम्र बढ़ रही है और राहुल को अपने करियर में किसी तरह से एस्टेब्लिश करना है। 10-12 साल में राहुल कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। लेकिन राहुल देव बर्मन की दादी ने इसका विरोध किया। गुस्से में एस डी बर्मन ने वापस मुंबई जाने का फैसला किया। इससे पहले आखिरी बार पंचम को बुलाया और कहा, जरा ये बताओ तुमने कौन कौन सी ट्यून्स बनाई हैं? बस पंचम ने एक के बाद एक 15 धुनें सुना दी। सचिन देव बर्मन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो मुंबई चले गए। एक साल बाद का वक्त, राहुल देव बर्मन कोलकाता के एक थिएटर में फिल्म फंटूश देख रहे थे। अचानक ये गाना

0: पर न जा न जा।
1: राहुल देव बर्मन उछल पड़े, अरे ये तो मेरी धुन है, ये तो उन्हीं धुनों में से एक है जो मैंने अपने पिता को सुनवाई थी। उन्होंने फौरन अपने पिता से संपर्क किया और उनसे कहा कि आपने मेरी ट्यून चुरा ली। सचिन देव बर्मन बहुत हाजिर जवाब थे। उन्होंने कहा, मैं तो ये टेस्ट कर रहा था कि तेरी धुनें पब्लिक किस तरह से स्वीकार करती है। हो गया ना टेस्ट, तू कामयाब हो गया बेटे, बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा तू। और इस तरह 9 बरस की उम्र में सचिन देव बर्मन ने राहुल देव बर्मन की पहली धुन का इस्तेमाल फिल्म फंटूश में किया था। आर डी बर्मन से जुड़े अनगिनत किस्से हैं। मजेदार बात यह है कि आर डी बर्मन मुंबई जाना चाहते थे और कोई जुगाड़ बन नहीं रही थी। कभी दादी नहीं मानती तो कभी पिता। सन 1955 के दिसंबर की बात है, गुरुदत्त कोलकाता आए। आर डी बर्मन गुरुदत्त से मिले और उनसे निवेदन किया कि मुझे मुंबई ले चलो। बस गुरुदत्त पंचम को मुंबई ले आए और फिल्म प्यासा में पहली बार पंचम ने एस डी बर्मन के असिस्टेंट के रूप में काम किया। उन्होंने एक गाना भी कंपोज किया और गानों में माउथ ऑर्गन भी बजाया और कुछ अन्य इंस्ट्रूमेंट भी बजाए।

ये वो दौर था जब सचिन देव बर्मन अपने इस प्रतिभाशाली बेटे को संगीतकार बनने के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने संगीत निर्देशन की बारीकियां अपने बेटे को सिखाई और उसको ये कहा कि जब कभी भी किसी गाने की धुन बन जाए तो प्रसन्न होने की बात नहीं है, उसे कुछ दिनों के लिए वैसे ही छोड़ दो, उसके बाद दोबारा सुनो, हो सकता है तुम्हें अपने ही काम की कमियां नजर आए, हो सकता है तुम अपनी ही ट्यून को रिजेक्ट कर दो। इस तरह से राहुल देव बर्मन ने अपने पिता से संगीतकारी की बारीकियां सीखी। कई बार राहुल देव बर्मन ने ये अपने इंटरव्यूज में बताया है कि कई धुनें उनके सपने में आई हैं। तो आइए वो गाने सुने जिनकी धुनें राहुल देव बर्मन को सपने में सूझी। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गाना।

एक और दिलचस्प बात है, रोजाना सुबह सचिन देव बर्मन टहलने के लिए जाया करते थे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई उन्हें देखकर फुसफुसाता, देखो देखो सचिन देव बर्मन जा रहे हैं। एक दिन दिलचस्प घटना हुई, एसडी बर्मन टहल रहे थे और पीछे से किसी ने कहा, देखो देखो राहुल देव बर्मन के फादर जा रहे हैं। सचिन देव बर्मन का सीना गर्व से फूल गया। घर जाकर उन्होंने आरडी से ये कहा कि लगता है अब तुम वाकई कामयाब होते चले जा रहे हो।

नासिर हुसैन तीसरी मंजिल बना रहे थे और उसके लिए एक नए संगीतकार की तलाश थी जो अपनी तरह से एक्सपेरिमेंट करे। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने राहुल देव बर्मन को लेने की सिफारिश की। ये वो दौर है जब तीसरी मंजिल के हीरो देव आनंद थे। आगे चलकर किस्मत ने पलटी खाई, देव आनंद इस फिल्म से बाहर हो गए और उनकी जगह शम्मी कपूर आ गए। जब ये खबर राहुल देव बर्मन को मिली तो उन्हें लगा किस्मत ने धोखा दे दिया, ये फिल्म तो अब हाथ से गई, क्योंकि सारी दुनिया जानती थी कि शम्मी कपूर के प्रिय हैं शंकर जयकिशन और शम्मी कपूर और जयकिशन तो बड़े पक्के दोस्त हैं। लेकिन यहाँ किस्मत ने काम किया। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन ने शम्मी कपूर से कहा कि पंचम में बहुत दम है, तुम उसकी धुनें सुनो तो सही। और बस यही हुआ। एक दिन शम्मी कपूर पंचम के पास पहुंचे और बोले, ए पंचम जरा धुनें सुनाओ। जैसे ही दो लाइनें पंचम ने सुनाई तो पता चला कि शम्मी कपूर ने ये गाना दार्जिलिंग में किसी चौकीदार को गाते हुए सुना था। और तुरंत शम्मी कपूर ने रोका और कहा, रुक जाओ, ये धुन तो मैं जयकिशन को देने वाला हूं। अब पंचम को लगा ये फिल्म मिलने वाली नहीं है। लेकिन धीरे धीरे काम आगे बढ़ता चला गया और हुआ ये कि न केवल नासिर हुसैन खुश हुए पंचम से, बल्कि शम्मी कपूर भी बहुत खुश हो गए। तीसरी मंजिल का जो गाना इस ट्यून पर था वो है ये।

सन 1964 में तीसरी मंजिल आई। इस फिल्म में जैज को बड़ी रचनात्मकता के साथ पंचम ने इस्तेमाल किया था और पंचम के खाते की ये एकमात्र हिट फिल्म थी। जब आराधना का संगीत तैयार हो रहा था तो आर डी बर्मन ने सचिन देव बर्मन की मदद की थी, वो उनके असिस्टेंट के तौर पर रहे थे। शक्ति सावंत को उनका काम अच्छा लगा और उन्होंने फिल्म कटी पतंग उन्हें दे दी थी। कमाल की बात यह है कि कटी पतंग में अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन पंचम ने किया और सही मायनों में अपनी पतंग आसमान में बहुत ऊंचाई पर तान दी।

ये गाना राग खमाज और राग कलावती पर आधारित है, लेकिन इसमें वेस्टर्न म्यूजिक के कॉर्ड्स का अद्भुत संयोजन दिखाई देता है। कमाल की बात यह है कि एक तरफ भारतीय शास्त्रीय संगीत और दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत, दोनों का जबरदस्त संयोजन करने में पंचम बड़े माहिर थे। एक समय की बात है, राजकमल स्टूडियोज में पंचम किसी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार कर रहे थे, तभी गुलजार वहां पहुंचे और उन्होंने अपने एक गाने का मुखड़ा पंचम को सौंप दिया। ये गाना था परिचय फिल्म का मुसाफिर हूँ यारों। गुलजार चले गए, पंचम ने अपना काम जारी रखा। रात हो गई, गुलजार गहरी नींद में सो रहे थे। रात के 1 बजे फोन की घंटी बजी। गुलजार ने उनींदे होकर फोन उठाया तो पंचम थे। कहने लगे, तुरंत नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए ट्यून लेकर आया हूँ। गुलजार नीचे उतरे, पंचम ने गाड़ी में कैसेट प्लेयर पर वो धुन गुलजार को सुनाई और पूरे बैंड्रा में ड्राइव करते रहे। बैंड्रा मुंबई का एक उपनगर है, आप तो जानते ही हैं। कार के डैशबोर्ड पर रिदम बजाते रहे और इस तरह से उन्होंने गुलजार को अपनी पहली ट्यून गुलजार के लिए जो बनाई थी वो सुनाई। आगे चलकर गुलजार और पंचम ने इतिहास रचा। फिल्म आंधी के लिए संगीत तैयार किया जा रहा था। ये वो दिन थे जब पंचम कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए बांग्ला गाने तैयार कर रहे थे। गीतकार गौरी शंकर ने बहुत ही बढ़िया एक धुन पंचम को दी। पंचम उस पर गाना बना रहे थे, तभी गुलजार को ये धुन पता चली और उन्होंने इस धुन में शब्द पिरो दिए। इस तरह बना फिल्म आंधी का ये अनमोल गाना।

गुलजार और आरडी बर्मन के बीच हमेशा रचनात्मक चुनौतियां चलती रहती थीं। एक बार गुलजार मेरा कुछ सामान, जो फिल्म इजाजत का मशहूर गाना है, उसकी इबारत लेकर पंचम के पास पहुंचे और कहा इसकी धुन बनानी है। पंचम ने वो पूरी इबारत पढ़ी और गुस्से में कहा, कल को तुम कोई समाचार पत्र मेरे पास ले आओगे और कहोगे कि इसकी भी धुन बना दो। ये भी कोई बात हुई? लेकिन पंचम ने इसी गाने की अनमोल धुन बनाई और गुलजार और आशा भोसले को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ गायिका के राष्ट्रीय पुरस्कार मिले।

0: आइए अब पंचम के गानों के प्रयोग पर एक नजर डालते हैं, किस तरह से गानों में वो अलग अलग साउंड तैयार करते थे। फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा, जरा इसका ये शुरुआती संगीत सुनिए। ये संगीत दरअसल एक खाली बोतल को फूंक कर निकाला गया है। फिल्म यादों की बारात के मशहूर गाने का ये शुरुआती संगीत। ये संगीत ग्लास को चम्मच से बजाकर निकाला गया है। फिल्म डार्लिंग डार्लिंग का ये गाना सुनिए।
1: भूल गए तुम हमको? याद नहीं क्या तुमको? अरे रे रे रे रे रे। कल मिले थे हम तुम, आज फिर मिलना था।
0: जब इस गाने के लिए रिदम की जरूरत हुई तो पंचम ने अपने ढोलक और तबला वादक अमृत राव काटकर की शर्ट उतरवा ली और उनकी पीठ पर अपने हाथों से ये रिदम बजाया।

फिल्म चरित्रहीन का ये गाना सुनिए। इस गाने का रिदम उल्टी टिम्पनी यानी केटल ड्रम को पलट कर रख कर बजाया गया है और इस तरह से निकाला गया है। अब जरा ये गाना सुनिए। इस गाने में ये जो रिदम है इसे सैंड पेपर को घिसकर और बांसों को आपस में टकराकर आवाज तैयार की गई है।

फिल्म पड़ोसन का ये गाना सुनिए। ये जो कंघी की आवाज है, ये दरअसल मेटल के बने लैटिन अमेरिकन स्क्रैपर से तैयार की गई है।

पंचम ने हिंदी सिनेमा के गाने तैयार करते हुए कई ऐसी ध्वनियां दी जिनसे पहले न तो संगीतकारों का परिचय था और न ही गाने सुनने वाले इन ध्वनियों को जानते पहचानते थे। पंचम ने तो न जाने किन किन चीजों से ध्वनियां निकाल ली। वो साउंड के सही मायने में जुनूनी थे, मास्टर थे। पंचम को वेस्टर्न म्यूजिक में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि सन 1987 में उन्होंने एक लैटिन अमेरिकन रॉक एल्बम निकाला था जिसका नाम था पंटेरा। हालांकि ये एल्बम 1983-84 में रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन इसे रिलीज करने में बहुत वक्त लग गया था। बहुत मन से उन्होंने इस एल्बम को तैयार किया था। वैसे पंचम ने हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी गाने देने का कमाल भी किया। यश चोपड़ा की फिल्म दीवार 1975 में आई थी, जिसमें पंचम ने उर्सुला वास से ये गाना गवाया था।

असल में टेमिस रूसो का बनाया हुआ है और ये एक ट्रेडिशनल साइप्रस ट्यून है। पॉप सिंगर अब्बा का एल्बम आया मामा मिया, इस गाने से प्रेरित होकर पंचम ने बनाया।

ठीक इसी तरह से बॉन जोरा का एक गाना है, इफ इट इज वेडनेसडे इट मस्ट बी बेल्जियम। इस गाने का हिंदी रूप पंचम ने बनाया फिल्म यादों की बारात में।

वैसे पंचम ने कई पाश्चात्य धुनों को बहुत अलग अंदाज में अपनी पैकेजिंग के जरिए अपना बनाया, नया रूप दिया और उन्होंने इसे हिंदी में पेश किया। जैसे फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने पंचम की गाथा सुनाई, हमने पंचम के कुछ गानों के बनने की कहानी, ध्वनियों के उनके अभिनव प्रयोग भी बताए। पंचम की ये दास्तान कभी खत्म नहीं हो सकती। उनका संगीत संसार इतना विस्तृत और विराट है कि आधे घंटे के इस समय में उसको समा पाना संभव नहीं है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार आर डी बर्मन पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
0: आइए सुने गीतों भरी कहानी। आइए आज सुनते हैं अरुण शेखर की लिखी गीतों भरी कहानी, उन दिनों की बात है। वाचन स्वर अरुण शेखर का।
3: ये आकाशवाणी है, निजी प्रस्तुत है आगर मालवा जिले की चिट्ठी। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है आगर मालवा जिले की चिट्ठी, आलेख महेश शर्मा, वाचन स्वर दीपा सिंह। आगामी वर्षा काल को देखते हुए आगरमालवा जिला कलेक्टर प्रीति यादव ने बाढ़, अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी विभागों को आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए हैं। गत दिनों हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से कहा है कि आपदा की स्थिति में त्वरित और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी विभाग अपनी कार्ययोजना तैयार रखें और आवश्यक संसाधनों की

उपलब्धता सुनिश्चित करें। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा पर्व पर आगरमालवा जिला मुख्यालय स्थित मोती सागर तालाब में आयोजित गहरीकरण और सफाई कार्य में प्रदेश के उच्च तकनीकी शिक्षा और आयुष विभाग के मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल हुए। इस दौरान मोती सागर तालाब में साफ सफाई कार्य किया गया। वहीं जन अभियान परिषद द्वारा जिले के विभिन्न विकास खंडों और गांवों में जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता को लेकर जल स्रोत पूजन, गंगा कलश यात्राएं, सामूहिक श्रमदान और जन जागरूकता गतिविधियों से ग्रामीणों को जल संरक्षण का संदेश दिया गया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आगरमालवा जिला अस्पताल में स्थापित तंबाकू व्यसन मुक्ति केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने, आमजनों को इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही तंबाकू सेवन से होने वाले कैंसर, हृदय रोग, सांस संबंधी बीमारियों और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश शासन द्वारा समान नागरिक संहिता यूसीसी के संबंध में अध्ययन और परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की पिछले दिनों आगरमालवा स्थित कंपनी गार्डन के नवीन मांगलिक भवन में समिति के सदस्य प्रोफेसर गोपाल शर्मा की उपस्थिति में जन परामर्श बैठक हुई। इसमें जन प्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों और अन्य वर्गों के लोगों ने विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार और सुझाव पेश किए। कृषि कल्याण वर्ष के अंतर्गत आगरमालवा स्थित पुराने कृषि उपज मंडी में प्राकृतिक खेती संवर्धन और खेत बचाओ अभियान के तहत पिछले दिनों आयोजित हुए एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि वर्तमान समय में धरती माता और मानव स्वास्थ्य दोनों को बचाने के लिए प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन का स्वरूप देना आवश्यक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आगरमालवा नगरीय क्षेत्र के पात्र 243 हितग्राहियों को पिछले दिनों विधायक मधु गहलोत ने स्वीकृति पत्र सौंपे। गौरतलब है कि पहली किश्त के रूप में 1-1 लाख रुपए के मान से 2,45,00,000 रुपए सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत हर घर जल बेहतर जल के तहत पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ और बेहतर बनाने के उद्देश्य से आगरमालवा जिले के नलखेड़ा नगर में 11 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन पिछले दिनों क्षेत्रीय विधायक भैरव सिंह परिहार ने किया। योजना के अंतर्गत कुंडालिया बांध से फिल्टर प्लांट तक 16 किलोमीटर रॉ वाटर पाइपलाइन, विभिन्न स्थानों पर उच्च क्षमता की पानी की टंकियों का निर्माण, पाइपलाइन विस्तारीकरण, नल कनेक्शन और फ्लोटिंग इंटरवेल सहित अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। आगरमालवा जिला पंचायत सभागृह में गत दिनों हुई पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक में सीईओ बी एस सोलंकी ने कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, टीकाकरण, चीरधारा, ग्राम योजना, दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान, मैत्री योजना, गौशाला संचालन और गौरस ऐप के उपयोग और प्रगति की जानकारी ली। जिले के नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा सर्वसिद्ध पीठ माँ बगलामुखी मंदिर में हवन पूजन, विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के संचालन के लिए पुजारियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की जांच और पात्रता परीक्षण प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए जिला प्रशासन ने टीम गठित की है। जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि में मत्स्य प्रजनन काल होने से कलेक्टर ने जिले के जलाशयों में मत्स्य खेत पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। नियमों के उल्लंघन पर उल्लंघनकर्ता को 1 वर्ष का कारावास या 5,000 रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। आगरमालवा कलेक्टर प्रीति यादव ने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी आवश्यक पात्र हितग्राहियों का ईकेवाईसी निर्धारित समय सीमा 30 जून तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए ताकि योजना की आगामी किस्तों का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त हो सके। वृद्धजनों को जागरूक करने के उद्देश्य से आगरमालवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बीते दिनों वृद्धाश्रम में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में द्वितीय जिला न्यायाधीश मधुसूदन जंखेल ने वृद्धजन के खान पान, स्वास्थ्य से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा करते हुए नालसा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा योजना और वरिष्ठ नागरिकों माता पिता के भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों की जानकारी दी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे आगरमालवा जिले की चिट्ठी, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। पेश है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में पहली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोड जिला रतलाम मध्य प्रदेश से। फरमाइश करता है जगदीश धाकर नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकर, युवराज सिंह धाकर, शिवांगी धाकर। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म बागी से ये गीत। इस गीत को लिखा है संजीव चतुर्वेदी ने, संगीत से सवारा है अमल मलिक ने और आवाजें हैं अरमान मलिक और श्रद्धा कपूर की।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कैसे ट्रिप में, अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम में अगला गीत सुनवाते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वरों में। संगीतकार है आनंद मिलिंद, गीतकार है समीर और फिल्म का नाम है राजा बाबू। ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है दंतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। श्रोता है हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश की अगली पेशकश है ग्राम लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से। इस गीत को सुनना चाहे है गोविंद वैष्णव, मुस्कान वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी। इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने, लिखा है समीर ने, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने, धड़कन

चलते हैं कार्यक्रम में अगली व्हाट्सएप फरमाइश की ओर। फिल्म आशिकी 2 से बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने, संगीत दिया है जीत गांगुली ने, आवाजें हैं अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल की। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें प्राप्त हुआ है जबलपुर मध्य प्रदेश से। फरमाइश करता है अशोक सिंह, सुनीता सिंह, प्यारी गुड़िया और वेदा सिंह।

आप सभी ने सुना था है आशा भोसले के स्वर में फिल्म सावन की घटा से ये गीत। शब्द है शमशुल हुदा बिहारी के, संगीत है ओपी नैयर का।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं संपन्न होता है। FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। पेश है कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। करते हैं शुरुआत आज की बात के साथ, पर उससे पहले बढ़ा लीजिए अपने रेडियो की आवाज और बने रहिए आपकी अपनी रेडियो सखी अलका के साथ। करेंगे मुलाकात हमारे आज के मेहमान से और रखेंगे आपके मनोरंजन का भी ख्याल। आज की हमारी बात जो हम करने जा रहे हैं वो है लघु उद्योग और महिला स्वरोजगार को लेकर। श्रोताओं, आज यानी 27 जून को हम मना रहे हैं विश्व सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस। आज का यह दिन समर्पित है उन लाखों मेहनती लोगों को जो छोटे छोटे उद्योगों और स्वरोजगार

0: के माध्यम से न केवल अपनी आजीविका चला रहे हैं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रहे हैं। महिलाएं भी घर की जिम्मेदारी निभाते हुए अपने हुनर और आत्मविश्वास के बल पर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम कर रही हैं। कोई घर से अचार पापड़ और मसाले तैयार कर रही है तो कोई सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, डेयरी, अगरबत्ती निर्माण, हस्तशिल्प या ऑनलाइन व्यवसाय से अपनी पहचान बना रही है। स्वरोजगार के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया तथा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया जाता है और ऋण भी। आज आवश्यकता है कि हम अपने भीतर छुपे हुनर को पहचाने, छोटे स्तर से शुरुआत करें और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़े। अपनी पहचान खुद बनाएं, क्योंकि छोटा सा प्रयास सफलता का आसमान बन सकता है। क्योंकि सपने साकार करने के लिए बड़े साधनों की नहीं बड़े हौसलों की जरूरत होती है। मजबूत इरादे छोटी सी कामयाबी की बड़ी कहानी लिख सकते हैं। ये तो थी हमारी आज की बात आपके साथ। मिलते हैं अंतराल के बाद।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कसी ट्रिप में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आपने ट्यून किया है बैतूल एफएम और अब पेश है एक प्यारा सा नगमा आप सभी के लिए।

0: आकाशवाणी बैतूल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम महिला जगत और अब वक्त है मुलाकात का। तो आइए आपको मिलवाते हैं स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती कविता लोखंडे जी से।
1: आज हम बात करने वाले हैं महिला स्वरोजगार और स्वयं सहायता समूहों की, जिन्होंने न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है बल्कि उन्हें एक पहचान भी दी है। तो हमारे साथ हैं SHG समूह से जुड़ी सखी कविता लोखंडे जी। नमस्कार मैम, महिला जगत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: मैम नमस्कार।
1: मैम सबसे पहले हमारे श्रोताओं को स्वयं सहायता समूह के बारे में कुछ बताइए और इसका उद्देश्य क्या है और आप समूह से कब और कैसे जुड़ी?
2: स्वयं सहायता समूह आसान शब्दों में कहा जाए तो ये गांव या मोहल्ले के 10 से 15 महिलाओं को मिलकर बनाया जाता है। एक ऐसा परिवार है जो एक दूसरे की मदद के लिए बनाया जाता है। यहाँ महिलाएं हर महीने अपनी एक छोटी छोटी बचत जमा करती हैं। इस जमा राशि से समूह की किसी भी बहन को जरूरत पड़ने पर बहुत कम ब्याज में लोन पर दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना है।
1: बहुत सी बहनें स्वयं सहायता समूह के बारे में सुनती हैं लेकिन उन्हें ठीक से जानकारी नहीं होती, तो आप ये बताइए कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लाभ क्या क्या हैं?
2: स्वयं सहायता समूह में जुड़ने से जो घर पर जो महिलाएं होती हैं जो कोई रोजगार नहीं कर रही है उनके ये फायदे हैं कि इसमें छोटे मोटे रोजगार शुरू कर सकती है, क्योंकि वो जो छोटी छोटी बचत करती है उस बचत से मतलब जो बैंक से लोन मिल जाता है उन्हें, ग्राम संगठन से लोन मिल जाता है, CLF से लोन मिल जाता है, इस लोन के आधार पर वो अपनी एक रोजगार शुरू कर सकती है जिससे उनकी एक मतलब रोजगार शुरू हो जाता है, अपने परिवार की एक आर्थिक मदद कर पाती
1: हाँ,
2: है,
1: कुछ राशि इनके पास
2: हाँ, अपने बच्चों को पढ़ाने में थोड़ी मदद कर पाती है, मतलब अपने एक ये देखा जाए कि अपने परिवार की वो एक प्रकार से मदद करती है। और सभी महिलाएं

0: बैंक ऋण, प्रशिक्षण या सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है?
1: जी बिल्कुल, बिल्कुल मिलता है। सरकार और बैंक इन समूह को बहुत बढ़ावा देती है।
0: अच्छा,
1: जी हाँ, और ऋण की बात कही जाए तो समूह अच्छा चलने पर बैंक से बहुत ही कम ब्याज पर लोन मिलता है, और ग्राम संगठन और सीएलएफ से भी उन्हें लोन दिया जाता है बहुत कम ब्याज पर। और प्रशिक्षण की बात कहें तो महिलाओं को कई सारी ट्रेनिंग करवाई जाती है, जैसे सिलाई सिखाना, अचार पापड़ बनाना और पशुपालन कैसे किया जाए, जूट बैग, पार्लर, मेहंदी, ये मतलब टोटल टोटल जितने भी अपने होते
0: छोटे
1: हैं
0: छोटे
1: छोटे छोटे,
0: रोजगार
1: हाँ,
0: जिससे
1: कृषि
0: स्टार्ट कर सकते
1: कृषि
0: हैं।
1: कैसे किए जाए, ये सारे प्रशिक्षण एकदम मुफ्त करवाए जाते हैं। इसमें कोई शुल्क नहीं देना होता है हम लोगों
0: बहुत
1: को।
0: सराहनीय काम है ये
1: जी
0: तो।
1: हाँ
0: अक्सर ये धारणा भी होती है कि कम पढ़ी लिखी महिलाएं व्यवसाय नहीं कर सकती, तो आपके अनुभव से ये बात कितनी सही है?
1: यह धारणा पूरी तरह से गलत है मैम
0: अच्छा,
1: जी।
0: सही
1: मैं नहीं
0: है।
1: मानती कि
0: बिल्कुल,
1: कम पढ़ी लिखी महिलाएं व्यवसाय नहीं कर सकती। व्यवसाय करने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं
0: बिल्कुल
1: होती
0: नहीं
1: है
0: होती, सही बोल रहे
1: जी।
0: हैं आप।
1: व्यवसाय के लिए ज्यादा मेहनत, समझदारी और लगन की जरूरत होती है, और हमारे अनुभव में ऐसी हजारों महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं और अनपढ़ महिलाएं हैं जिन्होंने समूह से जुड़कर न सिर्फ अपना बिजनेस शुरू किया है बल्कि आज वे अपने परिवार को बहुत अच्छे से संभाल भी रही है। और SHG से जुड़ने के बाद में यही कम पढ़ी लिखी महिलाएं पैसे का हिसाब किताब भी बखूबी सीख गई है।
0: सही है।
1: हाँ, और अपना मतलब बैंक जाना, बैंक से लेन देन करना, जैसे पहले महिलाएं, गांव की महिलाओं को बैंक का कोई नॉलेज नहीं था,
0: नहीं आता
1: पर आज
0: ज्यादा।
1: समूह से, स्व सहायता समूह में जुड़ने के बाद में सारे काम महिलाएं खुद से करने लगी है।
0: वही, जब कहते हैं ना
1: जी
0: कि खुद पे काम आता है तो वो
1: जी
0: हम कुछ ना कुछ सीख ही जाते
1: जी
0: हैं, है ना।
1: बिल्कुल
0: तो आपके समूह की ऐसी कौन सी सफलता है जिस पर आपको सबसे अधिक गर्व होता है? ऐसा कोई अनुभव है आपका?
1: जी बिल्कुल
0: जी
1: बहुत सारे अनुभव है ऐसे तो, पर
0: बताइए।
1: मैं कुछ थोड़ा बहुत बताऊंगी।
0: जी
1: हमारे समूह की सबसे बड़ी और गर्व वाली सफलता यह है कि जो महिलाएं पहले घर की चौखट से नहीं निकल पाती थी और बात करने में भी हिचकिचाती थी, कभी अपने काम स्वयं नहीं कर पाती थी, जिसे बैंक की कोई जानकारी नहीं थी, आज वही महिलाएं अपने सारे काम स्वयं करती हैं। जिन महिलाओं को घर के फैसले में शामिल नहीं किया जाता था, आज वे घर के फैसलों में बराबरी का हिस्सा पाती है सिर्फ स्वयं सहायता समूह में जुड़ने पर। आज हम
0: सही
1: लोगों को वही समान सम्मान मिलता है और आज वे पूरी तरह से आत्मनिर्भर भी हो चुकी है। समाज में अब सिर्फ किसी पत्नी या किसी की बहू के नाम से नहीं जाना जाता,
0: हाँ,
1: हमारी एक अपनी खुद की
0: खुद की
1: पहचान
0: पहचान बन
1: है।
0: गई है,
1: जी
0: सही
1: हाँ,
0: बात है,
1: ये सब हम स्वयं सहायता समूह पे जुड़ने पे ही सब कुछ संभव हो
0: सही
1: पा
0: है।
1: रहा
0: और
1: है।
0: आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ जाता है हमारी
1: आत्मविश्वास
0: जब
1: भी बढ़ गया,
0: पहचान
1: आज
0: बनती
1: हम
0: है तो।
1: मतलब चार लोगों में बात कर सकते हैं,
0: बिल्कुल,
1: वो जो डर रहता है वो
0: वो निकल
1: निकल
0: जाता
1: गया।
0: है,
1: जी हाँ
0: बिल्कुल सही। फिर भी लेकिन कुछ आज जो महिलाएं हैं वो चार दीवारी तक ही सीमित हैं, तो कुछ नया शुरू करने से जो डरती हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? क्या करना चाहिए उन्हें?
1: मैम, सभी बहनों से मैं यही कहूंगी कि डरना स्वाभाविक है, लेकिन डर के आगे ही जीत
0: जीत
1: होती
0: है।
1: है।
0: जी
1: शुरुआत हमेशा छोटी से ही होती है। जब
0: जी
1: हम घर से बाहर निकलकर चार बहनों से मिलते हैं तो हमारा हौसला अपने आप बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल,
1: आज भी महिलाएं किसी से कम नहीं है। स्वयं सहायता समूह एक ऐसा सुरक्षित और मददगार मंच है जहां आपको पूरा सहयोग मिलता है। मतलब हम आम महिलाओं को कोई ऐसा मंच नहीं मिलता जहां हम बोल सके, पर स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद में हमें एक मंच मिला, एक पहचान मिली है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए अपने डर को निकालकर कदम बढ़ाइए और आत्मनिर्भर बनिए। जब आप बढ़ेगी तभी आपका परिवार बदलेगा और पूरा समाज बदलेगा। यही मेरा
0: बिल्कुल
1: संदेश है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा संदेश है आपका। तो मतलब आप काम देखिए, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है
1: जी
0: ना,
1: बिल्कुल
0: अपना काम अपना ही होता है,
1: जी
0: इसलिए अपने पैरों पे खड़े होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे ख्याल
1: जी
0: से। तो
1: इसमें जुड़कर तो बहुत सारी महिलाएं रोजगार कर रही है।
0: जैसे
1: मतलब
0: किस तरह के रोजगार किए जा सकते
1: इसमें
0: हैं
1: जैसे कई
0: सुश्री?
1: सारे जैसे कई महिलाओं ने इसमें से लोन उठाकर अपनी एक खुद की शॉप, किराना दुकान हो गई, किसी
0: अच्छा
1: ने पार्लर स्टार्ट कर लिया,
0: अच्छा अच्छा
1: किसी ने बकरी पालन करके अच्छा खासा रोजगार कमा रही है, किसी ने पशुपालन किया, किसी ने अभी हमारा एक जीवन ज्योति CLF है उसमें कृषि को लेकर बहुत अच्छा कार्य कर रही है महिलाएं, स्वयं सहायता
0: अच्छा
1: समूह की महिलाएं, और मतलब उसमें पूरा ऑर्गेनिक खेती कर रही है वो लोग,
0: अरे वाह, ये तो
1: पूरी
0: बहुत अच्छी
1: ऑर्गेनिक
0: बात
1: खेती।
0: है,
1: जी हाँ,
0: बिल्कुल
1: और बहुत सारे ऐसे कार्य मुझे याद भी
0: ठीक
1: नहीं
0: है।
1: आ रहे हैं।
0: तो इनको कहाँ तक कितनी राशि इनको स्टार्टअप के लिए मिल सकती है?
1: मतलब इन्हें सबसे पहले तो ये जब समूह बनाते हैं तो इन्हें सरकार की तरफ से एक मदद मिलती है 20,000 RF की राशि
0: अच्छा
1: जिसे बोलते हैं।
0: अच्छा
1: जी हाँ, कि अपना समूह

0: वो आगे बढ़ा सके, कोई रोजगार धीरे से स्टार्ट कर सके 20,000 तक
1: हाँ
0: की।
1: हाँ
0: फिर जब इनका समूह देखा जाता है कि 2-4 महीने अच्छा चल रहा है, तो फिर इन्हें ग्राम संगठन से लोन मिलता है। तो ये लोन 50 से 80 हजार तक स्टार्टिंग में दिया जाता, फिर देखा जाता है कि बहुत अच्छा चल रहा है, तो ऐसे धीरे धीरे इनकी राशि
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: बढ़ाई जाती है।
1: जैसे जैसे उनकी
0: हाँ,
1: तरक्की
0: और
1: होती है
0: ऐसे ही
1: वैसे
0: जब
1: वैसे।
0: वो बैंक से लोन उठाते हैं, तो फर्स्ट टाइम इनका 1.5 लाख का लोन होता है, जिसमें जिसको हम सीसीएल बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: तो 1.5 लाख का होता है, जब वो सीसीएल 1.5 लाख का पेड कर देती है वापस से, तब फिर इनका 3 लाख का होता है। ऐसे ही
1: अच्छा,
0: बढ़ते चला जाता है, डबल होता है।
1: ये तो
0: तो
1: बहुत
0: बहुत
1: अच्छी
0: अच्छी
1: बात
0: मदद
1: बताई
0: मिलती
1: आपने।
0: है।
1: हाँ,
0: जी हाँ,
1: काफी मदद
0: इसमें
1: मिलती है
0: जिसमें
1: जी,
0: अच्छा खासा रोजगार भी शुरू कर पाती है अभी
1: बिल्कुल
0: हमारी
1: बिल्कुल
0: दीदिया, करती भी है और कर
1: बिल्कुल।
0: भी रही है।
1: तो ये हमारी आपकी जो बात है, आपकी बातें सुनकर के जरूर कुछ सखियां जो करना चाह रही होंगी वो जरूर आगे आएंगी।
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल,
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं, आपने इतना कीमती समय हमें यहाँ पर दिया। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी हमने आपको मिलवाया हमारी आज की मेहमान श्रीमती कविता लोखंडे जी से। अब रुक करते हैं संगीत की ओर और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, हमारे कार्यक्रम की खासियत यही है कि हम हर तरह के सेगमेंट आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें जानकारियों और मुलाकात से लेकर गीत संगीत द्वारा आपका मनोरंजन भी करते हैं, सेहत की पोटली भी खोलते हैं और किचन से लेकर गार्डनिंग तक जरूरी सुझाव और टिप्स भी आपसे साझा करते हैं। तो आज है बारी बागवानी की, जिसमें हमारे किचन गार्डन में हरी सब्जियों की खेती के कुछ टिप्स हम जानेंगे। तो सबसे पहले, ताजी और पौष्टिक हरी भरी सब्जियां लगाने के लिए ऐसी जगह चुनें जहां 4 घंटे की अच्छी धूप आती हो। अच्छी मिट्टी तैयार करें, गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाएं, जिससे पौधों को पर्याप्त पोषण मिल सके। मौसम के अनुसार सब्जियां लगाएं। मेथी, पालक, धनिया, पुदीना, चौलाई, हरी प्याज जैसी सब्जियां कम जगह में आसानी से उगाई जा सकती हैं। नियमित सिंचाई करें, यानी मिट्टी में नमी तो रहे पर पानी की अधिकता भी ना हो। रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद अपनाएं और कीटों से बचाव के लिए नीम के तेल का छिड़काव पौधों पर किया जा सकता है। इस तरह हमारे घर की बगिया को हरा भरा बनाकर हम ताजी सब्जियों को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। तो ये तो थी बातें बागवानी की, और अब वक्त है मनोरंजन का। तो सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम को समेटने का। तो सोमवार 29 तारीख को आपके साथ होंगी हमारी और आपकी सखी श्वीला संजय, जो करेंगी बात बदलते मौसम में कैसे रखें स्वास्थ्य का ध्यान इस विषय पर, और मिलवाएंगी एक नए मेहमान से। तो व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। इसी के साथ अपनी रेडियो सखी अलका को दे इजाजत। नमस्कार।

श्रोतो, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। अब कुछ ही पलों में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

आशा भोसले और राहुल देव बर्मन की आवाजों में द ट्रेन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। आज है संगीतकार और गायक राहुल देव बर्मन का जन्मदिन और इसी मौके पर उनके ही संगीतबद्ध किए गीत और कुछ गीत ऐसे जिनमें उनकी आवाज भी है ये सुनवाए जा रहे हैं आपको कार्यक्रम चित्रपट संगीत में।

0: राहुल देव बर्मन की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे। शोले फिल्म का ये गीत आनंद बख्शी ने लिखा। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत विविध भारती पर।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: सत्य पे सत्ता फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले, किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन, भूपिंदर और सपन चक्रवर्ती की आवाजें, गुलशन बावरा के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: किशोर कुमार, आशा भोसले और राहुल देवबर्मन की आवाजों में पुकार फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। शब्द रचना गुलशन बावरा की, संगीत राहुल देवबर्मन का।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आइए सुनते हैं राहुल देवबर्मन के संगीत से सजा ये गीत, जिसे गाया है आशा भोसले, किशोर कुमार, राहुल देवबर्मन ने। रॉकी फिल्म के इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: रॉकी फिल्म के इस गीत में आप सुन रहे थे आशा भोसले, किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन और साथियों को। और इसके साथ ही आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
2: साइंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।

नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को। सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत

दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत न होता तो कितनी सूनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे, पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आते हैं। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल बिस्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। ये फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में ये ठुमरी गाई थी। ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने साथ में

अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीमुशान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये और दूसरा गाना था ये।

1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने। वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का, जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर जी ने।

0: यहाँ हमने रामलाल जी की शहनाई का जिक्र किया तो इसी बहाने याद कर लें जाने माने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब को। सन 1959 में आई विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब ने, पर गानों में बजी शहनाई रामलाल जी ने खुद बजाई थी। सन 1966 में एक फिल्म आई थी लड़की सह्याद्री की। वी शांताराम के निर्देशन वाली इस फिल्म में मेवाती घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज ने एक गीत गाया था।
1: वंदना करो अर्चना करो,
0: ये गीत राग अहीर भैरव पर आधारित था। गीतकार थे भरत व्यास और संगीतकार थे वसंत देसाई। बहुत बाद में पंडित जसराज ने फिल्म 1920 में ये गाना गाया। सन 1976 में आई फिल्म कादंबरी। इस फिल्म में संगीत दिया था उस्ताद विलायत खान साहब ने। उन्होंने इस फिल्म में आशा भोसले से अमृता प्रीतम की ये रचना गवाई थी।

जानी मानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। पर उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती। सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव

सन 1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारे।

0: जानी मानी बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जानी माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही एक फिल्म थी सिलसिला।
1: जो तुम तोड़ो पिया मैं ना ही तोड़ूं रे।
0: जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे।

0: पंडित रविशंकर के संगीत से सजी एक और फिल्म थी गोदान।
1: ओ बेदर्दे क्यों तड़पाए जी राम रब जाए के, ओ निर्दर्दे मैं पछताए तुझसे निहाल।
0: सन 1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। चूंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। यह है उनका संगीतबद्ध किया एक गाना।

आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नकद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता

0: लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम, जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है, जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा, जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। वीआर, एआर, एक्सआर और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रोड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। स्मृति शेष। कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। 5 बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख करके लता दीदी स्वयं वहां आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

इसके बाद उन्हें कुछ और गाने मिले, जैसे मियां बीवी राजी, बात एक रात की।

और राजकुमार। सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई बरसों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं।

0: एक बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई बरसों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हों या शांति में, सुख में हों या दुख में, परिवार के साथ हों या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हों या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए हम आपको ही आवाज देते रहते हैं। सुनाए दे न दे

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं। और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: मुझे याद है लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी। तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर, उधर से इधर आ जा रही थी, बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर, धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मनमुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री वहां भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच घनिष्ठ संबंध दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने में सहायक हैं। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू किया है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले बृहस्पतिवार को पूरी कर ली गई। हरियाणा सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में 1 अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के ईंधन नहीं देने की नीति लागू करेगी। इसका उद्देश्य क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने यह निर्णय लिया। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। डॉ. मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल और आज याद कर रहे हैं गायक और संगीतकार राहुल देव बर्मन को।

राहुल देव बर्मन का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे। आंधी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में था। गुलजार के बोल कार्यक्रम यादों के महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: नरम गरम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे राहुल देव बर्मन और सपन चक्रवर्ती की आवाज ही गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिनमें आज याद कर रहे हैं हम संगीतकार और गायक राहुल देव बर्मन को।

0: राहुल देव बर्मन की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा गुलजार ने और ये गीत हमने आपको सुनवाया किताब फिल्म से। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

आशा भोसले और राहुल देव बर्मन की आवाजों में अपना देश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत, कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: मजरूह सुल्तानपुरी के बोल आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, अभिलाषा फिल्म के गीत में संगीत राहुल देव बर्मन का।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

गुलजार के बोल अंगूर फिल्म के इस गीत में आपने सुना। आशा भोसले की आवाज, राहुल देव बर्मन का संगीत। आपको याद दिला दें, शाम 4 बजे पिटारा में आप सुन सकते हैं बॉम्बे टॉकीज, जिसमें आज गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत की पहली कड़ी आप सुनेंगे। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की है। और शाम 6:45 से संगीत सरिता में सुनिए श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार है वायलिन वादक SL कंडारा। 10वीं कड़ी सुनिएगा। इस कार्यक्रम का ये पुनः प्रसारण है 6:45 पर। इस कार्यक्रम का की नई कड़ियां आप सुनते हैं और इस वक्त कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों के महफिल विविध भारती पर।

अनामिका फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल तर्ज राहुल देव बर्मन की। आपको याद दिला दें कि आज आप सुन सकते हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं आपके खत और आपकी फरमाइशें शामिल होती हैं। मन चाहे गीत कार्यक्रम 3 बजे से आप सुन सकते हैं, और विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

किशोर कुमार की आवाज़ में अमर प्रेम फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर सुन रहे हैं।

अजनबी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे तर्ज राहुल देव बर्मन की, आनंद बख्शी के बोल, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

आगले लज्जा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर सुन रहे हैं।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे अगर तुम ना होते फिल्म से ये गीत, गुलशन मावरा ने इसे लिखा राहुल देव बर्मन की तर्ज। और इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम सोशल मीडिया पेज पर अपने एक इबारत रोजाना पोस्ट करते हैं और उस इबारत में ही छुपे होते हैं आज के जो भी कार्यक्रम होता है उसमें किन शब्दों से गीत सुनाए जाएंगे। वो तो आज की जो इबारत है वो हम आपको बता दें। आज की इबारत है, यार दोस्त संगी साथी कितने छूटे कितने बाकी, पहिया जीवन का चलता जाता, पीछे छूटा सारा नाता, चले मुसाफिर अपने रस्ते, कभी झूमते कभी तरसते, यही जीवन की रीत है भैया, कभी धूप तो कभी हुचैया, दुनिया की ये गोल कहानी हमें सुनाती दादी नानी। तो इस इबारत में जो शब्द छुपे हैं उनसे आपको पता करना है कि कौन से ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में सुनाए जाएंगे। हालांकि आपने बहुत सी बात तो इबारत के बारे में भी लिख भेजी है और बताया भी है कि क्या वाकई जीवन इस तरह का होता है जहां हमारे पीछे बहुत सी चीजें छूटती जाती हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। हमारे एक साथी कहती हैं कि ये पंक्तियां जीवन के उस निष्ठुर लेकिन खूबसूरत सच को उजागर करती हैं जहां समय एक

निपुण कथावाचक की तरह हमारे रिश्तों की किताब के पन्ने पलटता रहता है। हम सभी इस अनंत यात्रा के ऐसे मुसाफिर हैं जिनके सूटकेस में पुरानी यादों की खनक और यादों में नए रास्तों की उम्मीदें होती हैं। सफर में लोगों का छूटना और नए चेहरों का जुड़ना इस गोल दुनिया का चक्र है जो हमें सिखाता है कि धूप की तपिश के बिना छांव के सुकून की कोई कीमत नहीं होती। दादी नानी की कहानियों से उपजा ये दर्शन असल में एक दिलासा है कि जब तक ये पहिया घूम रहा है हर उदासी के बाद एक नई मुस्कान का आना तय है। वहीं हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि आज दोस्त और दोस्ती पर बातें करेंगे। कुछ बचपन के साथी जवानी में बिछड़ गए, कुछ जवानी के साथी हम सफर बन गए और जैसे पति पत्नी कुछ दोस्त बचपन से पचपन तक और कुछ उसके बाद भी साथ चले। कुछ हमें और सारे जग को छोड़ गए और उनकी याद हमेशा के लिए रहेगी। उनके लिए दोस्त दोस्त ना रहा ऐसा नहीं कह सकते। विविध भारती ने कुछ दोस्त दिए, आज सुरीला सफर उनके साथ ही पूरा करेंगे, ऐसा हमारे साथी कह रहे हैं। और वाकई ऐसा होता है, स्कूल के बहुत से साथी छूट जाते हैं, अलग अलग शहरों में जब हम रहते हैं तो अलग अलग शहरों के साथ साथी छूट जाते हैं, कई बार वो हमारे साथ भी रहते हैं। तो किस तरह से आप अपने दोस्तों को अपने साथ बनाए रखते हैं और जीवन के इस चक्र को किस तरह से आप देखते हैं? क्या आपको लगता है वाकई जो चीजें छूट जाती हैं उन्हें याद करते ही रहना चाहिए या आगे बढ़ते रहना है आपका फलसफा क्या है? ये सारी बातें आप हम तक भेजिए। तब तक हम आपको कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाते हैं। कौन सी फिल्म का ये गीत है आपको बताना है और इस फिल्म में कौन होते हैं दो दोस्त ये भी बताइए।

नमक हराम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और इस फिल्म में दोस्त के रूप में नजर आते हैं अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज के कार्यक्रम के भारत चंद पंक्तियों में है, पंक्तियों से विदित है कि जीवन का सफर बिना विराम के निरंतर चलते जा रहा है। हमारे आत्मजन, स्वजन और शुभचिंतक भी इस सफर में शामिल हैं। भाग्य की नियति से सफर में अपने कुछ मिल रहे हैं और कुछ पिछड़ रहे हैं। वहीं एक और साथी कह रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल बीते लम्हों की यादें ताजा कर रहा है ये प्रोग्राम में। प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल के बाद कॉलेज के सभी संगी साथी आज याद आ गए। सर्विस के साथी भी याद हैं, पर प्राइमरी स्कूल के साथी आस पड़ोस के ज्यादातर थे, जिनके साथ स्कूल के समय के बाद घर पर और लाइट जाने पर रात तक साथ रहते थे। और गीत भी उन्होंने अपनी पसंद का एक बताया। देखते हैं आज के कार्यक्रम में वो गीत शामिल होता है या नहीं। वहीं हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि हम सभी जानते हैं कि जीवन नश्वर है, लेकिन एक रिश्तों का जाल हमारे जन्म से बुन जाता है, जिसमें उलझे हुए हम उन रिश्तों की खट्टी मीठी यादें लिए दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि जीवन ही कुछ ऐसा है और इंसान भी कुछ ऐसा व्यक्ति है कि वो अपने साथ यादों को समेटे रखता है, अपने आसपास के लोगों से दोस्ती जरूर करता है। और हमारे एक साथी कहने कि छूटते हैं पीछे, छूटते शहर, बिखर जाते हैं अपने ही घर। यादों का कारवां छूटता है, साथी, संगीत और अपनापन छूटता है, रिश्ते नाते और अपनों का साथ। धूप और छांव सा है जिंदगी का गांव, दूर क्षितिज में फिर से तलाशो राह, धूप की बाद ही मिलती है छांव की चाह। जीवन के इस अनवरत चक्र में हर पड़ाव हमें कुछ नया सिखाता है। और हमारी कौर साथी कहती हैं कि बचपन में दादी नानी जो कहानी सुनाती थीं, उनमें छिपे रहते थे जीवन के मर्म, पर हमें तब अक्ल नहीं थी कि दादी नानी की उन गहरी बातों का अर्थ समझ सकें। जब स्थिरता मन को भाने लगती है तो कुछ संगी साथी बीच राह में साथ छोड़ जाते हैं। वे पल बड़े असहनीय होते, जीवन की अपनी लय होती है, कभी शांत, कभी मध्यम, कभी तीव्र, यही संसार का नियम है। वाकई संसार का नियम तो यही है कि संसार और समय बदलता रहता है और हमारे सुख दुख भी बदलते रहते हैं, लेकिन हमारे जो यार दोस्त हमारे साथ होते हैं बचपन से होते हैं या कभी कभी पीछे छूट जाते हैं, और हम उन्हें बड़ी ही शिद्दत से खोजते हैं किसी पुराने शहर में जाकर या फिर अपने सोशल मीडिया के जरिए या फिर उनका नंबर कहीं तलाशते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? क्या आपको इस तरह से मिला कोई आपका पुराना बिछड़ा हुआ साथी, संगी, दोस्त? हमें बताइए। तब तक हम सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि इस गीत में संगीत किसका है।

याराना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे जिसमें संगीत राजेश रोशन का। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे तो स्कूल कॉलेज के लगभग सभी दोस्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वैसे दोस्तों का साथ बड़ा ही प्यारा रहता है। कल हमने भी अपने दोस्तों के साथ बड़ी मस्ती की, खूब सारे गीत गाए, बड़ा प्यारा साथ रहा हम सबका। हम बस एक दोस्त की बड़ी याद आई जो किसी कारण से हमारे साथ न चल सकी, उसे भी हमने वीडियो कॉल के साथ साथ रखा, तो दोस्ती इससे भी होती है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि इन दिनों दोस्ती निभाना बड़ा आसान है, और अगर आपके पुराने बिछड़े दोस्त आपको किसी तरह से मिल जाए सोशल मीडिया के जरिए या किसी दूसरे दोस्त के जरिए उनका नंबर मिल जाए तो बड़ा आसान है उन्हें देखना वीडियो कॉल के जरिए या उनसे बात करना मोबाइल के जरिए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी रहा जब बड़ी दूर दूर हो जाया करती थी दोस्त और सहेलियां, क्योंकि आमतौर पर सखियां तो अलग अलग जगह विवाह करके चली जाती थी और उनसे मिलना बड़ा मुश्किल होता था। तो कभी कभी रेलवे स्टेशन पर अचानक मुलाकात हो जाती थी, या कहीं कह सकते हैं कि अगर सबका माइक का एक ही जगह हुआ तो वहां पहुंचते थे एक ही समय में तो कहीं मिल गए। तो इस तरह से कभी आप मिले हैं अपने किसी दोस्त से अचानक, और कैसा लगा, कैसा रहा, वो किस्सा क्या है हमें बता सकते हैं आप आज के इस कार्यक्रम में। और सुरीला सफर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, ये गाना उन्होंने लिख भेजा है। कह रहे हैं एक बार चेन्नई से जबलपुर के सफर में एक मैडम साथ में थी, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होता है, सो हमने मिल बांट कर खाना खाया। रात में जब ट्रेन सुनसान राहों में तीस रफ्तार से अपना सफर तय करी थी, अचानक मैम की तबीयत कुछ बिगड़ने लगी। मेरे पास जो अंग्रेजी मेडिसिन या घरेलू दवाइयां थी उन्हें मैंने उन्हें दिया, जिससे उन्हें थोड़ा आराम आया। मेरा स्टेशन आने वाला था पर मुझे लग रहा था कि मैं ना उतरूं ताकि उनकी देखभाल कर सकूं, पर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो अब ठीक है। फिर भी लगातार फोन पर कॉन्टेक्ट बना रहा और वो मुझसे आज भी बात करती हैं और कहती हैं, मेरी जीवनदायिनी हो तुम, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। लेकिन हम तो सभी शुक्रगुजार हैं उस परवरदिगार की, कह रही हैं कि जो सारी दुनिया को संभाले बैठा है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने की, और इस खूबसूरत किस्से के जरिए ही आपकी ये मुलाकात यादगार भी बन गई, और जो बातें थोड़ी मोड़ी हो रही थी वो एक अच्छे रिश्ते में बदल गए, हम कह सकते हैं दोस्ती के रिश्ते में, जो आप भी आज तक उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो जीवन की ये यात्रा कुछ इसी तरह से चलती है, जहां हमें कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनसे हमारा वाकई कोई खून का रिश्ता ना भी हो, लेकिन बातों के जरिए या एक दूसरे के व्यवहार के जरिए ये रिश्ता बन जाता है। और जीवन की इस चक्र के बारे में क्या ही कहा जाए। कुछ ऐसा ही गीत आपको सुनवा रहे हैं, आपको बताना है कि इस गीत को किसने गाया है।

बातें करते हैं, हंसी मजाक करके अपना माइंड फ्रेश करते हैं। भाई हम तो कहेंगे कि आप सबसे अमीर हैं इन दिनों, क्योंकि इतने सारे दोस्त आपके पास हैं। और जो कमेंट हमने से पहले पढ़ा था उसमें हमारे साथी ने जो लिखा था शुरुआती बात कि 2022 में वो अपने डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल अजमेर में गए थे एलिमिनेट में, और वहां उन्हें सबसे मिलने का मौका मिला था। हमारे को साथी कह रहे हैं कि 2 साल पहले सपरिवार खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए ट्रेन से गए थे। दर्शन के बाद हमारी वहां पर उदयपुर के परिवार के साथ परिचय हुआ। फिर हम वहां से टैक्सी किराए पर लेकर जनमाता सालासर धाम और अन्य जगह दर्शन किए, और उस परिवार से आज तक मोबाइल से रिश्ता बना हुआ है। तो कई बार इस तरह से भी दोस्त मिल जाते हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हाँ, हम बहुत दिनों के बाद दोस्तों से मिले, हमारा विश्वास बरकरार है, अभी भी वो मेरा बड़ा ख्याल रखती है। सालों बाद देखने के बावजूद वही प्यार विश्वास का अनुभव हुआ है। भगवान उसे जल्दी ठीक करे, अब पता नहीं क्यों डिप्रेशन में गई है। भाई अगर डिप्रेशन में गई भी है तो उसका कारण तो आप पता कर ही लेंगी, साथ ही उनके साथ बने रहिए और उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकलने में भी उनकी मदद कीजिए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 1975 में पिताजी का ट्रांसफर सांची में हुआ था, वहां पर हमने 8वीं क्लास की पढ़ाई की। बाकी साथी तो बिछड़ गए, लेकिन एक दोस्त 50 साल बाद साल 2025 में मुलाकात हुई, हमने पुरानी बातें की। तो कितनी अच्छी रही होगी ये मुलाकात, हम बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि इस मुलाकात में तो आपने बहुत सारी चीजें की होंगी, बहुत सारी पुरानी बातें यादें ताजा की होंगी। तो चलिए एक याद ताजा कीजिए इस गीत के साथ, और हमें बताइए कि ये गीत किस फिल्म का है।

लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाजों में चोरी चोरी फिल्म का गीत आपने सुना हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं गाने सुरीला सफर में और आपकी बातें शामिल हो रही हैं इस कार्यक्रम में कमेंट्स के जरिए जो बातें आप हम तक भेज रहे हैं। हमारे साथी कहते हैं कि एक ऐसा मौका था जब जहां पुरानी क्लास के साथियों से मिलने का मौका मिला, स्कूल कोएड है, मीट में कई स्कूल के गुरुजनों से आशीर्वाद भी लेने का मौका मिला, एक अलग ही तरह का माहौल था। उस दिन सब खुश थे और खुशी के आंसू भी थे। एलुमनी मीट जो होती है आमतौर पर कॉलेज और स्कूल्स में बुलाए जाते हैं, पुराने सहपाठियों से मिलने का वहां मौका मिलता है। वहीं हमारे साथी कह रहे कि हमारे अगल बगल में रहने वाले 10-12 दोस्त रात को खाना खाने के बाद 1-1.5 घंटा रोज बैठकर गप्पे लड़ाते हैं, दुनिया भर की बात।

पिया का घर फिल्म का ये गीत आपने सुना और हमारे साथी कह रहे हैं कि बिछड़ने के बारे में है, जीवन में मिलना बिछड़ना चलता रहता है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में दिसंबर 25 में एलुमनी मीट जब हुई तो 40 से 45 लोगों से, इतने 40 45 साल बाद सबसे दोस्तों से वो मिले। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गांव में से ऑफिस के काम के लिए बाहर जा रहे थे तो ठंडी हवा का मौसम था, गाड़ी में पंखा जोर से चल रहा था तो उठकर पंखा बंद करने के लिए जैसे ही स्विच पर उंगली रखी तो एक जो साथी यात्री था उसने मना किया और जब उलझ पड़े और सबके सब लड़ाई झगड़ा जो भी होने लगा, उनकी बहस होने लगी तो मैंने सोचा कि अब मेरी खैर नहीं। शोर सुनकर बगल वाले कोच से एक लंबा चौड़ा शख्स वहां आया और मुझे देखकर चौंक पड़ा और बोला, अरे तू? और मैंने उसे पहचाना, लेकिन उसने सभी को शांत किया। पुलिस इंस्पेक्टर था वो, उसने पहचान पत्र दिखाया, वो मेरे बचपन का दोस्त था। 30 साल के बाद उसकी इस तरह से हमारी मुलाकात हुई, तो कितनी अच्छी मुलाकात रही होगी ये। और जीवन का भी ये सफर तो यूं ही चलता रहेगा। कुछ ऐसी ही बात कर रहा है ये गीत, बताइए किसकी आवाज में।

सचिन देव बर्मन की आवाज में गाइड फिल्म से गीत आपने सुना, यही कार्यक्रम का अंतिम गीत था। हमारी यही कामना है कि आपके सभी साथी बिछड़े हुए जो भी हैं वो आपको मिल जाएं और आप प्रसन्नता से रहें और आपकी

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। दिल का सौदा है एक ऐसा सौदा जहाँ जो खोए वो पाता है और जो पाता है वो खोता भी है। इसमें जीत कर भी हार है और हारने वाले की भी जीत। इसकी है ऐसी रीत कि न यहाँ होता है मोल भाव न कोई नाप तौल। जनाब ये है दिल का शहर, यहाँ बदलते हैं मौसम हर पहर। धूप में खिलती है चांदनी और रात में बरसते हैं शोले। जैसा जैसा दिल कहे बस कुछ वैसा ही मौसम होले।

खोजती है ये नजरें जिसे दिल के बाजार में वो दिल जाने कहाँ गुम है। ढूंढूं कहाँ उसे, ये सितारे भी गुमसुम हैं। जलते हैं अरमानों के दिए, उम्मीदों की रोशनी में ही कहीं मिल जाओ तो क्या बात हो। दिन रात का ये सफर मिट जाए जो हाथों में तेरा हाथ हो। है दिल को बहारों का अरमान तेरे संग, मैं तुझसी बन जाऊं, रंग जाऊं तेरे रंग।

हार जीत का ये दुनियावी तिलिस्म हमें समझ न आया है। हमने तो खोकर दिल को अपने तुझे दिल के करीब पाया है। इस सौदे में लगा हमारा सब कुछ, पर कुछ भी ना गंवाया है। जितना दिया पास से अपने, लाखों गुना वापस आया है। एक ओर दिल का सौदा हुआ खरा और दूसरी ओर निगाहों ने भी ठंडक पाई है। तेरे साथ जीवन की हर तन्हाई भी शहनाई है।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। दिल की सौदेबाजी में हमने पाया प्यार का रंग, दुनिया की भीड़ में मिला है एक हम कदम। तो मिल ही गया तो क्यों ना तय करें ये सफर अब साथ में ही, हाथों में हाथ थामे मिला ले कदम से कदम। कभी कलियां खिलें तो कभी गलियां मिलें, साथ है तेरा तो मुझे है अब क्या गम। देख ले साथी दिल की सौदेबाजी में, संभाल लेना जो जरा भी लड़खड़ाए।

इस दिल का क्या भरोसा, तेरा होकर भी तुझसे ही शर्माता है। कहते कहते अपनी कोई बात खुद ही चुप हो जाता है। कभी लगता है जैसे बरसों से हो तुम राजदार इसके, और अगले ही पल न जाने क्यों अपनी बातें तुमसे ही छुपाता है। छेड़ता है रागिनी कोई और झूम झूम जाता है, पाकर तुझे खोता है और खोकर तुझे पाता है। हर रोज तेरी एक नई झलक ही पाता है।

जिंदगी के सफर में चल रहे थे तन्हा ही हम, तुम मिले तो बदले मायने सफर के। इस साथ का दिल पे हुआ है असर ये कि अब तन्हाइयों में भी होती है तुमसे ही बातें, याद आती हैं वो मुलाकातें। जब फूलों की चादर पर चले थे हम साथ, यादों में ही थामती हूँ अब तेरा हाथ। तो हकीकत बनकर सामने नजर आते हो तुम, मेरे अफसानों को रंग जाते हो तुम।

आकाशवाणी के स्थानीय प्रसारण सेवा का ये बैतूल केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुने युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

बड़ा बदलाव एक छोटे से विषय से शुरू होता है। एक छोटा सा सपना, एक नई सोच और कुछ कर गुजरने का जज्बा, यही तो पहचान है आज की युवा की। यही बात बनाती है हमारे कार्यक्रम युववाणी को और भी खास। स्वागत है साथियों आपका हमारे कार्यक्रम में, और सुनिए खास बातें आपके साथ ही मिनी मालवी के साथ। और आज की बात का विषय है युवाओं के लिए स्टार्टअप और रोजगार के अवसर। दोस्तों, आज का युवा केवल अवसरों का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि अपनी मेहनत और हुनर से नए अवसर बना रहा है। जिस सोच से कभी सिर्फ एक कल्पना जन्म लेती है, वही सोच आगे चलकर एक नया व्यवसाय, नई पहचान और कई लोगों के लिए रोजगार का जरिया बन सकती है। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक छोटा सा विचार एक बड़े व्यवसाय का रूप ले सकता है, और कैसे युवा अपने कौशल को रोजगार में बदल सकते हैं, और कैसे आत्मनिर्भर भारत के सपने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। साथियों, स्टार्टअप का मतलब केवल बड़ी कंपनी शुरू करना ही नहीं है। स्टार्टअप का अर्थ है किसी समस्या का नया और बेहतर समाधान ढूंढना। अगर आपके पास कोई नया विचार है, कोई हुनर है या समाज की किसी जरूरत को पूरा करने का तरीका है, तो वह है आपके स्टार्टअप की शुरुआत बन सकता है। आज के समय में युवाओं के लिए कई क्षेत्र खुले हैं, जैसे डिजिटल सेवाएं, शिक्षा, कृषि तकनीक, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यावरण संरक्षण, ऑनलाइन व्यवसाय, स्थानीय उत्पाद और रचनात्मक क्षेत्र। श्रोताओं, कई युवा अपने छोटे छोटे प्रयासों से आगे बढ़ रहे हैं। कोई अपने गांव के उत्पादों को ऑनलाइन पहुंचा रहा है, तो कोई नई तकनीकों से किसान की मदद कर रहा है। सफलता की शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से होती है। दोस्तों, रोजगार के अवसर केवल सरकारी या निजी नौकरी तक सीमित नहीं है। आज कौशल के आधार पर भी बहुत से अवसर उपलब्ध है। अगर आपके पास अच्छा संचार कौशल है, तकनीकी ज्ञान है, रचनात्मक सोच है या सीखने की इच्छा है, तो आपके लिए रास्ते खुले हैं। युवाओं को सबसे पहले अपनी रुचि और क्षमता को पहचानना चाहिए। खुद से पूछिए, मुझे क्या करना पसंद है, मेरी कौन सी योग्यता दूसरों के काम आ सकती है। यही सवाल आपके भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं स्टार्टअप शुरू करने के कुछ जरूरी कदमों की। पहला कदम है एक अच्छा विचार। लेकिन केवल विचार होना ही काफी नहीं है, जरूरी है कि उस विचार से किसी की समस्या हल हो रही हो। दूसरा कदम है सीखना और तैयारी करना। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जानकारी और अनुभव बहुत जरूरी है। दोस्तों, तीसरा कदम है छोटी शुरुआत से डरना नहीं। बड़े सपने अक्सर छोटी शुरुआत से ही पूरे होते हैं। आज सरकार और कई संस्थाएं भी युवाओं को नए व्यवसाय शुरू करने के लिए मार्गदर्शन और सहायता देती है। युवाओं को इन अवसरों की जानकारी रखनी चाहिए और उनका सही उपयोग करना चाहिए। रोजगार पाने के साथ साथ रोजगार देने वाला बनना भी आज की युवा की नई पहचान बन रही है। जब एक युवा अपना काम शुरू करता है, तो वह सिर्फ अपना भविष्य नहीं बनाता, बल्कि दूसरों के लिए भी अवसर पैदा करता है। स्टार्टअप शुरू करते समय सबसे पहली चुनौती आती है एक सही विचार को पहचानना। कई बार हमारे पास बहुत सारे आइडिया होते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी होता है कि कौन सा विचार लोगों की वास्तविक जरूरत को पूरा कर सकता है। और दूसरी चुनौती होती है आर्थिक संसाधनों की शुरुआत में पूंजी की कमी। निवेश जुटाना और खर्चों को संभालना युवा उद्यमियों के लिए एक बड़ी परीक्षा होती है, लेकिन सही योजना, धैर्य और मेहनत से इस चुनौती को धीरे धीरे पार किया जा सकता है। साथियों, तीसरी चुनौती है बाजार में अपनी पहचान बनाना। आज के समय में कई कंपनियां और नए स्टार्टअप सामने आ रहे हैं, ऐसे में अपने उत्पाद या सेवा को अलग पहचान दिलाना बहुत जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि युवा अपने ग्राहक को समझे, उनकी जरूरतों को जाने और लगातार अपने काम में सुधार करते रहें। इसके बाद हमारी चौथी बड़ी चुनौती है सही टीम का निर्माण। अकेला व्यक्ति शुरुआत कर सकता है, लेकिन एक मजबूत टीम किसी भी सपने को बड़ी सफलता में बदल सकती है। ग्राहकों का भरोसा जीतना, जब कोई नया स्टार्टअप शुरू होता है तो लोगों को उस पर विश्वास करने में समय लग सकता है, इसलिए गुणवत्ता, अच्छी सेवा और ईमानदारी से धीरे धीरे अपनी पहचान बनानी पड़ती है। इसके बाद आती है चुनौती समय का सही प्रबंधन। एक उद्यमी को कई जिम्मेदारियां एक साथ संभालनी पड़ती है। कभी योजना बनाना, कभी टीम को संभालना और कभी ग्राहकों की जरूरतों को समझना, ऐसे में समय का सही उपयोग बहुत जरूरी होता है। एक और महत्वपूर्ण चुनौती है दोस्तों, इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा।
तकनीकी के साथ आगे बढ़ना आज का समय डिजिटल युग का है। अगर कोई स्टार्टअप नई तकनीकों को नहीं अपनाता है तो वो प्रतिस्पर्धा में पीछे रह सकता है, इसलिए नई चीजें सीखना और खुद को अपडेट रखना जरूरी है। कई बार युवा उद्यमियों के सामने चुनौती आती है मानसिक दबाव और धैर्य बनाए रखना। शुरुआत में सफलता जल्दी ना मिले तो निराशा आ सकती है, लेकिन हर बड़े सफर में उतार चढ़ाव आते हैं, निरंतर प्रयास ही आगे बढ़ने की ताकत देता है। इसके बाद दोस्तों, कानूनी प्रक्रिया और नियमों को समझना किसी भी व्यवसाय को सही तरीके से चलाने के लिए जरूरी नियमों, पंजीकरण और जिम्मेदारियों की जानकारी होना आवश्यक है। लेकिन साथियों, हर चुनौती का सामना सही सोच और तैयारी के साथ किया जा सकता है। स्टार्टअप की पहली चुनौती है सही योजना की कमी। इससे निपटने के लिए जरूरी है कि कोई भी युवा अपना काम शुरू करने से पहले एक मजबूत योजना बनाए, अपने लक्ष्य, ग्राहकों की जरूरत और बाजार की स्थिति को समझे बिना तैयारी के कदम बढ़ाने के बजाय छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर आगे बढ़ना सफलता की राह को आसान बनाता है। साथियों, आर्थिक समस्या सामने आए तो घबराने के बजाय खर्चों की सही योजना बनानी चाहिए। जरूरी चीजों पर ही निवेश करना, उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग करना और नए अवसरों की तलाश करना एक अच्छे उद्यमी की पहचान होती है। बाजार में पहचान बनाने की चुनौती को दूर करने के लिए अपने काम में गुणवत्ता और नएपन को महत्व देना बहुत जरूरी है। ग्राहकों की प्रतिक्रिया सुनना, उनकी जरूरतों को समझना और समय के साथ अपने उत्पाद या सेवा में सुधार करते रहना बहुत जरूरी है। श्रोताओं, टीम से जुड़ी चुनौतियों को दूर करने के लिए ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहिए जो अपने काम के प्रति जिम्मेदार हो और जिनके विचार सकारात्मक हो। एक मजबूत टीम किसी भी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में भी बड़ी भूमिका निभाती है। असफलता के डर से निपटने के लिए सोच को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है। सफल लोग वही होते हैं जो मुश्किल समय में भी सीखते हैं और अपने प्रयास जारी रखते हैं। आज के समय में तकनीक सीखना भी बहुत जरूरी है। डिजिटल साधनों का सही उपयोग करके स्टार्टअप अपने काम को बेहतर बना सकते हैं और अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन असफलता के रास्ते में चुनौतियां भी आती है। कभी असफलता मिल सकती है, कभी मेहनत का परिणाम देर से मिल सकता है। ऐसे समय में धैर्य, निरंतर प्रयास और सीखने का साहस हमें आगे बढ़ाती है। श्रोताओं, याद रखिए, सफलता वही होती है जो कोशिश करने को रोकती नहीं। तो दोस्तों, अपने हुनर को पहचानिए, नए विचारों को मौका दीजिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाइए। अब चलते हैं दोस्तों एक म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

मधुर दिनों के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। दोस्तों, कहते हैं सपने वही सच होते हैं जिनके लिए मेहनत और हौसलों के साथ अवसर भी मिले। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक अवसर की जो कई विद्यार्थियों के सपनों को नई उड़ान देता है, और वह है छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप। दोस्तों, शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, यह हमारे विचारों, हमारी क्षमता और हमारे भविष्य को आकार देती है। लेकिन कई बार आर्थिक परिस्थितियाँ कुछ होनहार स्टूडेंट के रास्ते में चुनौती बन जाती है। ऐसे समय में छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप एक ऐसी सहायता बनकर सामने आती है जो विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने और अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। साथियों, स्कॉलरशिप केवल आर्थिक मदद नहीं बल्कि विद्यार्थी के आत्मविश्वास को बढ़ाने का माध्यम भी है। जब किसी छात्र को उसकी मेहनत और प्रतिभा के आधार पर सहायता मिलती है तो उसके अंदर आगे बढ़ने का उत्साह और भी मजबूत होता है। दोस्तों, आज के समय में छात्रवृत्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोर्टल है NSP यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। यह एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कई विभागों की छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी मिलती है। विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन की स्थिति देख सकते हैं और भुगतान की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। NSP पर आवेदन करने के लिए विद्यार्थियों को अपनी जरूरी जानकारी भरनी होती है और दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इसमें विद्यार्थियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR की सुविधा भी होती है, जिससे आवेदन प्रक्रिया आसान बनती है। साथियों, अब बात करते हैं छात्रवृत्ति किन किन क्षेत्रों में मिल सकती है। सबसे पहले स्कूल स्तर की छात्रवृत्तियाँ कक्षा 1 से 10वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कई योजनाएं होती है, जिसका उद्देश्य है बच्चे को पढ़ाई जारी रखने के लिए सहायता देना। तो दोस्तों, हमने बात की थी छात्रवृत्ति के अलग अलग क्षेत्रों की, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे और तीसरे क्षेत्र की ओर, जहां आज के युवा अपने सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं। दूसरा क्षेत्र है उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन। दोस्तों, 12वीं कक्षा के बाद जब विद्यार्थी कॉलेज

की पढ़ाई शुरू करते हैं तो उनके सामने कई नए अवसर आते हैं, लेकिन कई बार फीस और अन्य खर्चों के कारण विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं। ऐसे समय में उच्च शिक्षा से जुड़ी छात्रवृत्ति उनकी मदद करती है। स्नातक, स्नातकोत्तर, शोध और अन्य उच्च शिक्षा कार्यक्रमों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अलग अलग योजनाएं होती हैं। इनका उद्देश्य यही है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को बीच में न छोड़े और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं। आज के युवा इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून मैनेजमेंट, कंप्यूटर, कृषि, विज्ञान, कला और कई नए क्षेत्रों में अपना भविष्य बना रहे हैं। इन सभी क्षेत्रों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए अलग अलग छात्रवृत्ति के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। उच्च शिक्षा की छात्रवृत्तियाँ केवल फीस तक सीमित नहीं होती, बल्कि कई बार पढ़ाई से जुड़े अन्य खर्चों में भी सहायता देती है। इससे विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाने का अवसर मिलता है। श्रोताओं, तीसरा क्षेत्र है तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, यानी टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन। दोस्तों, आज का समय कौशल और तकनीक का समय है। युवा केवल पारंपरिक शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि वे नई तकनीक, डिजिटल दुनिया और प्रोफेशनल कोर्सेज की ओर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, फार्मेसी, मैनेजमेंट, डिजाइन, होटल मैनेजमेंट, पैरामेडिकल और अन्य तकनीक पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं उपलब्ध होती है। इन छात्रवृत्तियों का उद्देश्य युवाओं को कौशल से जोड़ना है और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसरों के लिए तैयार करना है। साथियों, आज एक विद्यार्थी अगर अपनी रुचि और क्षमता को पहचान ले तो वह किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकता है। छात्रवृत्ति उसके रास्ते को आसान बनाने वाली एक सहायता बन सकती है। इसके अलावा मेधावी विद्यार्थियों के लिए मेरिट आधारित छात्रवृत्ति, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए सहायता योजनाएं और कुछ विशेष वर्गों के लिए विद्यार्थियों के लिए भी योजनाएं उपलब्ध रहती है। दोस्तों, केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि खेल, विज्ञान, कला और शोध जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी अलग अलग संस्थाओं द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण छात्रवृत्तियाँ योजनाओं में केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, UGC और AICTE से जुड़ी योजनाएं शामिल होती है। विद्यार्थियों को अपनी योग्यता और पात्रता के अनुसार योजना चुनना चाहिए। स्कॉलरशिप के आवेदन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साथियों, इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अपनी जानकारी सही से भरें, दस्तावेजों को ध्यान से लगाएं और आवेदन की अंतिम तिथि से पहले प्रक्रिया पूरी करें। प्रिय विद्यार्थियों, याद रखिए, छात्रवृत्ति सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं है, वह आपके सपने को आगे बढ़ाने का एक अवसर है। आपकी मेहनत, आपकी लगन और सही जानकारी मिलकर आपके भविष्य को नई दिशा दे सकती है। दोस्तों, ज्ञान की यात्रा यही नहीं रुकती है। अब समय है एक छोटे से संगीत का, तो आइए सुनते हैं यह गीत।

गीत के बाद आज के क्रम में हम बढ़ते हैं अंतिम अंक में सेहत मंत्र की ओर, जिसमें जानेंगे साथियों तनाव चिंता कम करने के तरीके। यह एक ऐसा विषय है जो आज के तेज रफ्तार जिंदगी में हम सभी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। कभी पढ़ाई का दबाव, कभी करियर की चिंता, कभी रिश्तों की उलझन, तो कभी भविष्य की सोच, और धीरे धीरे यही छोटी छोटी बातें हमारे मन पर तनाव का बोझ बढ़ाने लगती है। लेकिन याद रखिए, जीवन में समस्या आना स्वाभाविक है, पर उन समस्याओं से निपटने का तरीका सीखना हमारे हाथ में होता है। आज की बातचीत में हम जानेंगे तनाव और चिंता को कम करने के सरल और प्रभावी तरीके। श्रोताओं, तनाव एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें हमारा मन किसी परिस्थिति को लेकर लगातार सोचता रहता है। थोड़ी चिंता हमें बेहतर तैयारी के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन जब चिंता हमारी शांति और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने लगे तो हमें खुद का ध्यान खुद से रखना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला तरीका है दोस्तों, खुद से बात करना। कई बार हम अपनी परेशानियां मन में दबाकर रखते हैं। अपने किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना, अपनी भावनाएं साझा करना मन को हल्का करता है। दूसरा तरीका है समय का सही प्रबंधन। कई बार काम का बोझ इसलिए ज्यादा लगता है क्योंकि हम उसे सही तरीके से बांट नहीं पाते। अपने कामों की सूची बनाइए, जरूरी काम पहले कीजिए और खुद को थोड़ा आराम देने का समय भी दीजिए। तीसरा तरीका है गहरी सांस और ध्यान। कुछ मिनट शांति से बैठकर अपने सांसों पर ध्यान देना मन को शांत करने में मदद कर सकता है। यह हमें वर्तमान पल में ही रहने की आदत सिखाता है। श्रोताओं, जीवन में कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हर दिन एक जैसा नहीं होता, लेकिन हर दिन को बेहतर बनाने की कोशिश जरूर की जा सकती है। अब बात करते हैं एक बहुत जरूरी तरीके की, पॉजिटिव थिंकिंग की। दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी परेशानियों को नजरअंदाज कर रहे, बल्कि यह है कि हम मुश्किल समय में भी समाधान खोजने की कोशिश करें। अगर कोई गलती हो गई है तो खुद को लगातार दोष देने की बजाय उससे सीखना चाहिए। याद रखिए, हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। तनाव कम करने के लिए शारीरिक गतिविधियां भी बहुत जरूरी है। थोड़ी देर टहलना, योग करना, कोई पसंदीदा खेल खेलना मन को तरोताजा कर सकता है। इसके साथ ही अच्छी नींद, संतुलित भोजन और अपने लिए थोड़ा समय निकालना भी मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है। आइए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं कुछ छोटे छोटे बदलावों की ओर, जो हमारे जीवन में बड़ा फर्क ला सकते हैं। पहला बदलाव है मोबाइल और सोशल मीडिया का संतुलित उपयोग।

पर रहने से भी मन थक जाता है। इसलिए कुछ समय डिजिटल दुनिया से दूरी बनाकर रखना, अपने आसपास की चीजों को महसूस करना बहुत जरूरी है। दूसरा बदलाव है अपने रुचियों को समय देना। पेंटिंग, संगीत, किताबें पढ़ना या कोई रचनात्मक कार्य मन को खुशी देता है। तीसरा बदलाव है खुद की तुलना दूसरों से कम करना। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है, अपनी प्रगति पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। श्रोताओं, चिंता का सबसे बड़ा कारण कई बार भविष्य की अनिश्चितता होती है। हम आने वाले कल के बारे में इतना सोच लेते हैं कि आज का खूबसूरत पल भूल जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आज को बेहतर बनाया जाए। तो साथियों, आज की चर्चा में हमने जाना, तनाव को कम करने के लिए हमें अपने मन की बात सुननी होगी, समय को व्यवस्थित करना होगा, सकारात्मक सोच अपनानी होगी और अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा। जीवन में चुनौती रहेगी लेकिन हमारे अंदर उन्हें संभालने की क्षमता भी होती है। तो आइए कुछ पल के लिए अपनी चिंताओं को पीछा छोड़ते हैं और खो जाते हैं संगीत की मधुर धुनों में।

तो श्रोताओं, इसी सकारात्मक बातों के साथ आज की इस मुलाकात को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे एक नई सोच, नई जानकारी और नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए अपने मन को खुशियों से भरिए और हर पल को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। मैं हूँ आपके साथ ही मिनी मालती, आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, ये जानते हैं आकाशवाणी के स्थानीय प्रसारण सेवा के बैतूल केंद्र से आज और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:05 पर सुनिएगा पन्नालाल गुजेरे और साथियों के गाए लोकगीत। कार्यक्रम होगा लोक संगीत। फिल्म संगीत हम सुनवाएंगे शाम 6:30 पर। गैर फिल्मी गीत, गजल, भजन और कव्वाली का सम्मिलित स्वरूप कार्यक्रम सबरस आप तक पहुँचेगा शाम 6:50 पर। सामूहिक चर्चा शुरू होगा हमारे अन्नदाताओं का कार्यक्रम किसान वाणी शाम 7:20 पर। इसमें आज की बात का विषय होगा

किसान वाणी गांव में स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम बातें नहीं गीत नहीं। युगल गीत का समय होगा रात्रि 8:30 पर। रात 9 बजे से 10 बजे तक आप सुनेंगे विविध रंगी कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से। फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम मन भावन हम सुनवाएंगे रात 10 बजे। रात 10:30 बजे सुनिएगा गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार होंगे अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन। और आइए अब जानते हैं हमारी कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। कल की प्रातःकालीन सभा में सुबह 6 बजे हम सुनवाएंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम भक्ति धारा। कार्यक्रम चिंतन का समय होगा सुबह 6:30 पर। कल सुबह 6:35 पर सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान। स्वर होगा भूपेंद्र सिंह महेंद्र कपूर और साथियों का। दिनेश नागले और साथियों के गाए लोकगीत आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक रंजनी में कल सुबह 6:45 पर। कल सुबह 7:20 पर हम सुनवाएंगे पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से सुबह सवेरे। जनउपयोगी जानकारी पर आधारित इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह 7:50 पर। बच्चों का मनपसंद कार्यक्रम फुलवारी सुनिएगा कल सुबह 8:30 पर। इसमें आज की बात का विषय होगा अंतरिक्ष की सैर। साथ ही कार्यक्रम में होगी साक्षात्कार बच्चों का और सुनिएगा चंद फिल्म गीत। सुबह 9:00 से 10:00 तक आप सुनेंगे विविध रंगी कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से। जिले की चिट्ठी ये कार्यक्रम होगा कल सुबह 10:00 आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। सुबह 10:05 पर सुनिएगा श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो FM बैतूल मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा दिन में 11:00 से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। दिन में 12:00 से शाम 5:30 तक आप आनंद लेंगे विविध रंगी कार्यक्रमों का विविध भारती मुंबई से। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी हम सुनवाएंगे कल शाम 5:30 पर। इसमें आज की बात का विषय होगा जीवन साथी का चुनाव अच्छी तरह सोच समझ कर करें। साथ ही सैर सपाटा में शांति और इतिहास की धरोहर सांची का स्तूप जानिएगा। स्तंभ के अंतर्गत सक्सेस टिप्स में जानिएगा अपना आत्मविश्वास मजबूत रखें। और अगले क्रम के आकर्षण के साथ ही कार्यक्रम में होंगे कुछ फिल्म गीत। सामूहिक चर्चा के साथ शुरू होगा हमारे अन्नदाताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा कल शाम 6:00। इसमें आज की बात का विषय होगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। सामूहिक कृषि चर्चा में जानिएगा लौकी की खेती में समस्याएं और उनका समाधान। श्रृंखला के अंतर्गत सुनिएगा बातें खेती किसानी की। साथ ही कार्यक्रम में होगी भेंट वार्ता, सुनेंगे लोक संगीत, जानेंगे मौसम का हाल और बाजार भाव। कल शाम 6:30 से ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन इंग्लैंड में खेले जा रहे मैच का द्विभाषी आंखों देखा हाल सुनिएगा मैच होने की समाप्ति तक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। आज इसमें कलाकार हैं पन्नालाल गुजेले और साथी।

आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। आज इसमें कलाकार हैं पन्नालाल गुजेले और साथी।

आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। आज इसमें कलाकार हैं पन्नालाल गुजेले और साथी।

अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। आज इसमें कलाकार थे अन्नालाल गुजेले और साथी। ये आकाशवाणी बैतूल है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज में। गीत को लिखा है फैज अनवर ने, संगीतकार हैं अमर उत्पल और फिल्म का नाम है आजा मेरी जान।

फिल्म संगीत में अगला गीत सुनिए उदित नारायण की आवाज में। गीत को लिखा है समी ने, संगीतकार है नदीम शर्मन और फिल्म का नाम है बेवफा।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनाएंगे पंकज उधास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। फिल्म का नाम है दयावान। इस गीत को लिखा है अजीज कैसी ने और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

पंकज उधास और अनुराधा पौडवाल के गाए इस प्यारे से गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी के हम बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं गीत, गजल, भजन और कव्वाली पर आधारित कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम में पहले सुनिए गैर फिल्मी गीत, आवाज दलेर मेहंदी की।

मोहम्मद रफ़ी और बलबीर की गाई इस कवाली के साथ ही कार्यक्रम सबरस अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बैतूल है। चंद लम्हों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में होंगे शामिल। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान करेगा स्थापित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे और राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। सेशल्स की राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी ने उनका हार्दिक स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा का उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वह सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने रविन्द्र भवन भोपाल में आयोजित सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने एमएसएमई इकाइयों को लगभग 225 करोड़ रुपए की, विभिन्न स्टार्टअप्स को लगभग 39 लाख तथा वृद्ध उद्योगों के लिए 1274 करोड़ की प्रोत्साहन राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश विदेश की अग्रणी कंपनियां मध्य प्रदेश में लगातार निवेश कर रही हैं। हमें विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश देश के शीर्ष 3 अग्रणी राज्यों में अपनी सशक्त पहचान स्थापित करेगा।
1: आने वाले पूरे 5 साल के होते होते हम निश्चित रूप से 3 प्रमुख राज्यों में से शामिल होंगे। जिस प्रकार से हमारी गति चल रही हर एक क्षेत्र में, और केवल यहाँ नहीं, कनाडा, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया, ये सबको मिला लो तो जो हमने एमओयू किए थे और वो लगभग 9300 करोड़ से अधिक का निवेश अब ग्राउंड ब्रेकिंग में पहुंच। हमारे पास कनाडा की मैकमैन फूड कंपनी आगरमालवा में 3800 करोड़ का काम कर रही, ये एग्रीकल्चर के सेक्टर में बड़ा काम कर रही।
0: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देशभर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी के उद्घाटन सत्र में श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे चालकों को उनके पारिश्रमिक का अधिक से अधिक हिस्सा मिलेगा और यात्रियों को भी सुरक्षित तथा किफायती यात्रा का लाभ मिल सकेगा।
2: मैं आज इस मंच से कह देना चाहता हूं, हम तो 1.5-2 साल में 500 से ज्यादा शहर में पहुंच जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। हर जगह हम पहुंच जाएंगे। हम नागपुर पहुंचेंगे, पुणे पहुंचेंगे, मुंबई पहुंचेंगे, लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर, कोलकाता, 31-7 के पहले 7 स्थान पर भारत टैक्सी पहुंच जाएगी। और 2 साल के अंदर छोटे बड़े मिलाकर हम 500 शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर हमारी 2-व्हीलर, ऑटो और 4 व्हीलर का कंसेप्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से गुना जिले के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री सिंधिया ने आज सर्किट हाउस में लोगों से भेंट कर उनकी शिकायतें सुनी। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत कंजा गांव में पौधरोपण किया। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज उज्जैन में सिंहस्थ 2016 के अनुभव 2028 का संकल्प विषय पर आधारित कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला में सिंहस्थ 2028 के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए अधोसंरचना विकास, विभिन्न विभागों की कार्ययोजना व समन्वित तैयारियों पर व्यापक मंथन किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ 2028 को भव्य, दिव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए उज्जैन में विकास कार्य निरंतर जारी है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जन समुदाय में इस अभियान के प्रति जागरूकता के लिए आज विशाल रैली आयोजित की गई। कटनी जिले में भी कल राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का व्यापक आयोजन किया जाएगा। अभियान के दौरान जिले के 5 वर्ष आयु वर्ग के सभी 1,73,700 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। भिंड जिला टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें 5 वर्ष तक के लगभग 2,70,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। शिवपुरी जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा पल्स पोलियो अभियान को लेकर आज जन जागरूकता रैली निकाली गई। नरसिंहपुर जिले में इस अभियान के अंतर्गत 1,58,945 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। मंदसौर में अभियान के प्रति जागरूकता के लिए शहर के प्रमुख मार्गो से रैली निकाली गई। प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद इसकी रफ्तार फिलहाल थम गई है। अगले 2 से 3 दिनों में इसके फिर सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में पंचायत सांवेर की ग्राम पंचायत कदवाली बुजुर्ग में जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 का समापन समारोह आयोजित किया गया। मंदसौर में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जबलपुर के 2 प्रमुख कृषि उत्पाद मटर और सिंगाड़ा को भारत सरकार की ओर से भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर खंडवा जिले के ग्राम बलखड़ में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिवपुरी जिले में कल श्रमायुक्त संदीप GR ने माधव चौक का भ्रमण कर श्रमिकों से सीधे संवाद किया। आयरलैंड और भारत के बीच 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का 2रा और अंतिम मैच कल खेला जाएगा। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा ICJS कार्यान्वयन और डिजिटल एकीकरण विषय पर कल 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में किया जाएगा। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अंतर संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत पुलिस अभियोजन न्यायालय, जेल, फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य विभाग के मध्य डिजिटल समन्वय और डेटा इंटर ऑपरेबिलिटी को सुदृढ़ बनाना है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: आकाशवाणी के स्थानीय प्रसारण सेवा का ये बैतूल केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं अन्नदाताओं का कार्यक्रम किसान वाणी।
1: किसान वाणी। किसानवाणी गांव में हमारा कार्यक्रम प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार के दिन यह हम प्रसारित करते हैं। इसी कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए हम आज ग्राम बोरी तहसील आमला के बहुत ही अच्छा गांव है जिसमें हम आज पहुंच रहे हैं। हमारे साथ हमारी सीमा बहन भी है। सीमा बहन जी, आपका क्या विचार है आज के अपने इस कार्यक्रम में?
2: विचार तो यही है कि आज जो हमको यहाँ से अनुभव मिलेंगे अपने किसान भाइयों के, अपने पशुपालकों के, साथ ही हमारे जो ये लोक संगीत वाले हमारे भाई बहन बैठे हैं, तो ये भी सुनने को मिलेगा कि भाई इनके क्षेत्र में कौन सा लोक संगीत, लोक गीत प्रचलित है, ये सब जानने को मिलेगा। और निश्चित ही जब हम यहाँ से किसान भाइयों के, हमारे बुजुर्ग दादाजी जो बैठे हुए हैं, इनके अनुभव लेकर के जाएंगे और हमारे जो किसान भाई सुनेंगे हमारा कार्यक्रम किसान वाणी गाँव में किसानों के साथ, तो निश्चित ही उनको लाभ भी मिलेगा।
1: दीदी, जैसा कि आपने ग्राम बोरी का चयन कर लिया है और आपकी बात भी हो चुकी है जहां तक हमारे गणेश यादव जी और वहां के सभी हमारे कृषक भाई भी हैं, और वहां की जो पृष्ठभूमि है वो काफी बहुत अच्छी है, तो चलिए हम चलते हैं ग्राम बोरी। जैसा कि हमारे किसान भाई वहां पर इंतजार भी कर रहे हैं हमारा, वहां एक चौपाल भी है और वहां पर हमारे किसान भाई बैठे हैं, तो चलिए चलते हैं।
2: चलिए, तो हम अपने किसान भाइयों का इंतजार खत्म करते हैं और बातचीत अपनी शुरू करते हैं।
1: बातचीत शुरू करते हैं, उससे पहले हमारे बहुत सारे किसान भाई बैठे हैं, उनसे पहले राम राम लेते हैं।
2: हाँ, राम राम।
1: राम राम।
3: राम राम।
1: सीमा बहन जी, जैसे कि हमारी आज की बात का विषय बहुत सारा है, लेकिन हम अपने इस गांव की पृष्ठभूमि से अपनी बात को चालू करते हैं। हमारे इस गांव के बारे में, क्या यहां पर खेती है, कैसे लोग हैं, यहां का क्या व्यवसाय मुख्य रूप से है? तो सबसे पहले हमारे बीच में एक बहुत ही अच्छे वयोवृद्ध कृषक भाई बैठे हैं, आपका शुभ नाम बताइए।
4: मंगल जी यादव।
1: यादव जी, आपकी उम्र कितनी है?
4: 76 साल।
1: तो बहुत अच्छी आयु आपकी हो गई है और आप स्वस्थ भी है, तो आप अभी जो स्वस्थ है इसका क्या कारण है?
4: स्वस्थ है इसका क्या कारण साहब, सर शुरू से खेती करी है और खेती में रहे हैं, कोई नौकरी नहीं, चाकरी नहीं।
1: देखो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का एक सपना है कि योग करो, सुबह घूमने जाओ, व्यायाम करो और स्वस्थ अनाज और स्वस्थ जो हमारी सब्जी है उसका सेवन करो, ये उनका संदेश भी है। और हम देख रहे हैं कि आज आपके स्वस्थ होने का मुख्य कारण बता रहे हैं कि हम कृषि करते हैं। कृषि क्या है, एक ही बहुत महत्वपूर्ण काम हो जाता है। सुबह से लेकर कौन कौन से काम करते हैं?
4: उठतन से ढोर बच्चा भैंसी लगाना, गाय लगाना, फिर उनको बांधना, चारा पानी करना, फिर मुंह धो के चाय पीना, फिर खेती में जाना, ऐसा चलता है।
1: और आपके पास जमीन की?
4: जमीन है 15 एकड़।
1: पूरी सिंचित जमीन है?
4: हाँ, कोई 1-2 एकड़ तो बिना पानी की भी है।
1: ये गांव कैसा है, कितने लोग यहाँ पर निवास करते हैं, क्या क्या लोग यहाँ पर काम करते हैं?
4: यहाँ पर खेती वाले भी है और मजदूर लोग भी है।
1: सभी के पास पानी है?
4: हाँ, पानी तो थोड़ा थोड़ा, कोई पास कम है, कोई पास ज्यादा है, पर है। और जिसके पास जमीन ही नहीं है उसके पास पानी भी नहीं है।
1: जैसा कि यहाँ पर आपके गांव से लगा हुआ माँ रेणुका चावल मंदिर है
4: जी, हाँ।
1: ये अपने इस क्षेत्र की एक पहचान है कि भाई बहुत सारे लोग माँ रेणुका मंदिर के नाम से पहचानते हैं, इसके बारे में इसका इतिहास बताइए।
4: सर, बहुत बहुत दूर से आते हैं पूजा करने के लिए, वहाँ मंगलवार शुक्रवार तो अक्सर करके आदमी जो नहीं आते वो भी आते हैं। पहले तो 5-7 दिन का मेला लगता, पर अब तो महीना 2 महीना का लगता है। रामनवमी से चालू होता था, अभी भी है।
1: यहाँ पर लोगों की आस्थाएं पूरी होती
4: है? जी हाँ, आस्थाएं पूरी होती
1: है। और आपके क्षेत्र पर जो हम देख रहे हैं कि बड़ी हरियाली बनी हुई है, हरियाली भी है बहुत क्षेत्र में, जहाँ हम देख रहे हैं कि अभी हमारे सर भी जैसे आकाशवाणी बैतूल से यहाँ पर आए हैं, जैसा कि उनको भी बड़ा प्रसन्न मन यहाँ पे लग रहा है कि पूरे क्षेत्र में हरियाली दिख रही है, जगह जगह पर गन्ने की खेती काफी अधिक मात्रा में हो रही है।
4: जी हाँ, गन्ना की खेती होती है।
1: तो माता जी का कहीं ना कहीं आशीर्वाद इस क्षेत्र में बना है?
4: जी हाँ, बिल्कुल बना है। बारिश नहीं होती है, अगर तुम हेत ने से कोई कार्यक्रम करो तो जरूर बारिश होती है।
1: मतलब जो भी हम मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है?
4: होती।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है।
4: जी हाँ।
1: और सेहत के लिए आप हमारे सभी जो आपके बराबर के जो बुजुर्ग लोग हैं कि वो भी स्वस्थ रहे आपके जैसे, उसके विषय में आप क्या बताना चाहोगे?
4: वो तो शरीर पर है, सभी का शरीर एक रंग नहीं है, किसी को बीमारी लग जाती है, किसी को।
1: पर उसको दूर करने का एक मुख्य काम यह है कि जैसे आप सुबह उठते हैं, फिर अपने खेत में घूमने जाते हैं, पशुओं की सेवा करते हैं, दूध दोहते हैं, और फिर स्वस्थ पौष्टिक आहार भी तो आप लेते हैं।
4: जी हाँ,
1: भाई आपके पास पशुपालन है?
4: नहीं, हमने थोड़ी थोड़ी सब्जी लगाई है, ज्यादा तो नहीं, पर उसमें कोई दवा दारू नहीं है, जैसी भी है, कम फरती ज्यादा फलती, पर हम उसको लाते हैं खाते हैं।
1: बहुत अच्छा गांव है आपका।
4: हाँ जी हाँ,
1: यहाँ पर अच्छी कृषि होती है। हाँ। सब लोग व्यवसाय से जुड़े हैं
4: जी।
1: तो दीदी, हम जैसे कि हमारे बीच में बहुत सारे कृषक भाई बैठे हैं, हमारे इस क्षेत्र के जनपद अध्यक्ष महोदय भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे।
2: जनपद अध्यक्ष महोदय, हमारे गणेश भैया, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब से आपने पद संभाला है, विकास की दृष्टि से यदि हम देखें तो कौन कौन से विकास के पहलुओं को आपने छुआ है और विकास हुआ है?
3: बहन जी, बहुत सारे विकास के कार्य हुए हैं। वैसे तो सरकार हर क्षेत्र में विकास कर रही है, पर हम लोगों ने भी जो संभव हो सका वो अधिक से अधिक अच्छा करने का प्रयास किया है। मैं इसी गांव की बात अगर करूं तो यहां सारी सुविधाएं हैं, पीने का स्वच्छ पानी आता है, प्रकाश की व्यवस्था उचित है, गांव में प्रवेश करते ही बढ़िया शानदार सा प्रवेश द्वार बना हुआ है, यहाँ से चावल मंदिर तक दोनों साइड।

0: पौधे लगे हुए हैं। गांव में एक बड़ा तालाब बना हुआ है, एक मिनी स्टेडियम बना है और घाट निर्माण हुआ है मूर्ति विसर्जन के लिए। तो इस प्रकार के अनेक अच्छे कार्य हुए हैं। स्कूलों की व्यवस्थाओं के लिए हमने अच्छा प्रयास किया है कि वहां पानी की व्यवस्था हो, बालक बालिकाओं के लिए स्वच्छ लेट बाथ की व्यवस्था हो। इस टाइप से सारे काम अच्छे करने का प्रयास किया है। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पूरे जनपद क्षेत्र में, चाहे वो यहाँ का हमारा आखिरी गाँव क्यों न हो, वहाँ भी विकास की झलक आपको देखने को मिलेगी।
1: मतलब अंतिम छोर, गांव के अंतिम छोर तक के हर व्यक्ति को सुविधा मिले, ऐसा प्रयास है। अब शिक्षा की जब बात आती है गणेश भैया, तो अक्सर लोग देखना बेटियों को जो पढ़ाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं उसमें पिछड़ जाते हैं, भाई आठवीं तक के है, दसवीं तक है, उसके बाद बेटियों को नहीं पढ़ाना। तो यहाँ बेटियों की शिक्षा का क्या स्तर है?
0: यहाँ तो अच्छा है स्तर शिक्षा का, बेटियों को काफी सभी लोग जागरूक है। पहले एक समय था कि बेटियों को लोग नहीं पढ़ाते थे, किन्तु अब तो काफी लोगों में समझदारी भी आ गई है और बेटियां भी पढ़ने में आगे होती है। अगर पूरे गाँव का हमारा रिजल्ट अगर देखे हैं तो यहाँ अधिकतर टॉप 10 में ज्यादा संख्या बच्चियों की है, चाहे वो कोई भी स्कूल हो। मेरे यहाँ तो बेटियाँ सब पढ़ रही हैं, वो भी एक उदाहरण है। मेरी एक बेटी MBBS हो गई है, दूसरी इंजीनियर हो गई है, बाकी के भी सब तैयारी में लगे हैं। गांव की बच्चियां भी बहुत अच्छा कर रही हैं।
1: आपने आगे भविष्य के लिए और कौन कौन सी योजनाएं तैयार की हैं कि भाई यदि हम ऐसा कर लेंगे तो हमारे गाँव का और विकास होगा?
0: हम विशेष तौर पर शिक्षा पर ध्यान देना चाह रहे हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो और यहाँ कोचिंग भी लगती है, तो उन्हें भी हमने सुविधा उपलब्ध कराई है। वो सर आते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, ताकि हमारे गांव के बच्चे अधिक से अधिक शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, क्योंकि शिक्षा में आगे बढ़ेंगे तभी विकास, अच्छा विकास संभव है।
1: शिक्षा और महिला सशक्तिकरण, ये मूल मुद्दे हैं हमारे गांव के विकास की बात कर लें हम, या शहर के विकास की बात कर लें, या देश के विकास की बात कर लें, तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में क्या प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं?
0: यहाँ पर इस ग्राम पंचायत में सरपंच महिला है, महिला होने के नाते वो काफी प्रयास करती हैं।
1: एक जो स्व सहायता समूह बने हुए हैं, जैसे कभी किसी महिला को परिवार में कोई परेशानी हुई तो उसको, वो जो समूह की महिलाएं हैं वो आपस में जो पैसे जमा करती हैं वो मिल जाता, ऐसे स्व सहायता समूह भी आपके यहाँ है?
0: हाँ, बहुत सारे समूह हैं। वो स्वयं हर महीने अपना खुद की धनराशि जमा कर रही है और बैंकों ने भी सुविधा दे दी है। अधिकतर आप लोग जितना पैसा जमा कर रहे हैं उससे 4 गुना बढ़ा के बैंक फिर वापस करती है। वो महिलाएं आपस में लेकर के अपना व्यवसाय चलाती है, पुनः बैंक को लौटा देती है। तो इस प्रकार से महिलाओं का भी काम चल जा रहा है, समूह भी अच्छा चल रहा है और इनके पास धनराशि की कोई कमी नहीं।
1: यानी कुल मिलाकर हम ये बात करें कि जो बोरी गाँव है विकास की ओर अग्रसर है और निरंतर विकास करते जा रहा है, और इसके लिए जो आपका प्रयास है वो बहुत सराहनीय है और विकास करे, यही हम कामना करते हैं।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: जैसे कि हमारे यादव जी, इन्होंने एक जैविक खेती की बात कही थी, और निश्चित रूप से हमारी शासन व्यवस्था और हमारे आसपास का अगर वातावरण अच्छा रखना चाहते हैं तो जैविक खेती के ऊपर हमको आना पड़ेगा। तो यादव जी ने जैसे कि बात बताई जैविक खेती वाले कृषक की, बहुत ही अच्छा समय है कि उनसे भी हमको बातचीत करने का अवसर मिला है।
6: धन्यवाद आपका।
5: क्या नाम है आपका?
6: मेरा नाम राजेश यादव है, ग्राम बोरी का रहने वाला हूँ, और मैं पिछले 8 सालों से गौ आधारित प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ।
5: इसके लिए आपको कहीं से ऐसी कुछ गाइडलाइन कहना चाहिए या किसी प्रकार का कोई आपको सजेशन मिला है जिससे आपका मन हो गया इस प्रकार का काम करने?
6: नहीं, मन तो ऐसे बढ़ा, जैसे हमारे यहाँ आप देखते पहले छोटे हल से खेती होती थी तो बढ़िया हल से जुताई अच्छी हो जाती थी, उसके बाद ट्रैक्टर आए, ट्रैक्टर में 35 के 40 के ट्रैक्टर अच्छी जुताई करते थे, अब उसके बाद जमीन कड़क होते चली तो 55 और 60 के ट्रैक्टर से भी जमीन नहीं फूट रही है और उपज भी धीरे धीरे कम होते जा रही है। ये देखते हुए मेरा रुझान ये प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की तरफ गया और मैंने शुरुआत की, और इसकी शुरुआत में मेरे को हमारे जो कृषि अधिकारी है अमला के, इन्होंने बहुत सहयोग किया। आत्मा के ATM साहब है, देशमुख साहब है, और BTM साहब जो जायसवाल साहब है, इन्होंने काफी अच्छा सहयोग दिया मुझे, काफी जगह ट्रेनिंग भी दिलवाई मेरे को, भोपाल और गुजरात में 2 जगह ट्रेनिंग दिलवाई, उसके बाद मैंने ये जैविक खेती चालू की है। जैविक खेती में घर के लिए, सिर्फ घर परिवार के लिए सब्जी वगैरह लगा देते हैं हम अभी तो, क्योंकि उसका मार्केट रेट हमको यहाँ मिलता नहीं, मेहनत ज्यादा है जैविक खेती में। दूसरा फिर गन्ना चल रहा है, जैविक खेती में गन्ना आसानी से हो जाता है, उसमें जो जैसे दूसरी फसलें जैसे मक्का हो गई, गेहूं हो गई, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा लगती है और गन्ने में भी लगती है, पर गन्ने में अपन पूर्ति जीवामृत है, ये जो जैविक खाद है इनसे हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो गन्ना, और अभी बारिश में धान लगाते हैं तो ये
5: तुरंत जो मौसम आया रहा है खरीफ का
6: जी,
5: उसमें जैविक खेती के लिए आपने क्या तैयारी की है, कौन सी फसल लेने का विचार किया?
6: उसमें जैविक खेती में कुछ दलहनी फसलें हैं जैसे मूंग उड़द है, और धान की फसल लेने की तैयारी चालू है अभी।
5: क्या ऐसी आपने तैयारी करी है?
6: उसके लिए तैयारी हमने ये की है, एक जीव घन जीव अमृत है वो बना के रखा है, बीज उपचारित करने के लिए बीजामृत भी जैसे ही बारिश आती है उसके 24 घंटे पहले तैयार कर लेंगे, और फिर पानी के साथ में जीवामृत तो हमेशा चलाते रहेंगे।
5: अच्छा, धान की मेडागास्कर पद्धति अभी नई मात्रा में प्रचलित है, जो रोपा विधि से हम लोग बो रहे हैं
6: जी,
5: पुरानी जो पद्धति से हमारे किसान भाई बोते थे ताश से कतार कतार की दूरी,
6: उत्पादन तो ये जो है रोपा विधि है इसमें अच्छा ज्यादा मिलता है, क्योंकि जो ताश वाली विधि थी उसमें पानी की कमी होती थी, उसमें चारा ज्यादा हो जाता है, खरपतवार ज्यादा हो जाता है, और जो ये अपन रोपा विधि से लगाते हैं इसमें काफी अच्छे से क्यारी मचा के ये बना के लगाते हैं तो उसमें चारा नहीं होता और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। और महामहिम राष्ट्रपति से ही मिले, उनको भी मैंने खाद की जानकारी दी जो मैं बना रहा हूँ और जैसी खेती कर रहा हूँ उनकी, और बहुत बढ़िया लगा। इसके लिए मैं हमारे गाँव के अध्यक्ष महोदय गणेश यादव को भी बधाई देता हूँ, और हमारे विकास खंड के अधिकारी, कृषि अधिकारी जिनने मेरा मार्गदर्शन किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे को राह दिखाई।
5: हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय से मिलने का एक
6: अवसर प्राप्त हुआ,
5: उनसे बातचीत भी की आपने, काफी आपको अच्छा लगा होगा
6: जी जी,
5: और उन्होंने आपकी प्रशंसा भी की होगी, और निश्चित रूप से आपकी जो एक पहल है
6: जी,
5: ये आने वाले एक समाज के लिए काफी अच्छी होगी।
6: नहीं, आने वाले समय में हर किसानों को जैविक पे आना पड़ेगा, क्योंकि अपनी आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए खेती बचाना जरूरी है, तो ये जो अभी खेती बचाओ अभियान जो चला है उससे जुड़ के किसानों को आना चाहिए, और बहुत किसान लोग हमारे मतलब हमारा ये देख के और आ भी रहे हैं।
5: जो किसान भाई और भी, क्या आप उनको इस प्रकार की समझाइश देते हो कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ तो आपको भी ये काम करना चाहिए?
6: जी जी, बिल्कुल देते हैं। हमारे यहाँ शाम में अध्यक्ष यादव बैठते चौपाल, आगे यहाँ आगे चौपाल है, तो हम वही किस खेती बाड़ी की चर्चा करते हैं, गांव में कैसा विकास हो, कौन सी फसल अच्छी होगी, कैसे करने से क्या होगा, ये विषय पे हमारे यहाँ किसानों और हमारे बीच में चर्चा होती रहती
5: है। निश्चित रूप से हम रेडियो के माध्यम से जो भी हमारे किसान भाई सुन रहे हैं उनसे तो यही अपेक्षा करेंगे कि वो भी जैविक खेती के ऊपर आगे बढ़े।
7: सबसे पहले अच्छी बात तो ये है कि इनसे जो हमारे युवा वर्ग आज खेती से पलायन करते जा रहा है उनको भी ये बात समझ में आएगी कि यदि हमने खेती को थोड़ा ध्यान से किए, प्राकृतिक खेती किए, जैविक खेती किए, तो खेती हमारे लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है।
5: देखिए कार्यक्रम हमारा चूंकि किसानवाणी गांव में है और बिना मनोरंजन का कार्यक्रम थोड़ा सा अधूरा सा लगता है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफी अच्छी मंडली हमारे बीच में बैठी है, महिला मंडल भी बैठे हैं, युवा साथी भी मंडल बैठे हैं, तो इनसे एक लोकगीत सुनेंगे पर इनसे पहले अपना परिचय जानेंगे।
8: संगीत कला मंडल बोरी, हम डेली हफ्ते में एक बार बैठते हैं रात में मस्त सभी लोग और ऐसी चर्चा करते हैं, कृषि संबंधित भी चर्चा हो जाती है और भजन हरि भजन भी हो जाती है।

0: बहुत ही सुंदर भजन श्रोताओं, अभी ग्राम बोरी के मंडल के माध्यम से आपने सुना। बहुत ही अच्छे कलाकार हमारे बीच में यहाँ पर थे। आपका नाम बताइए।
1: मेरा नाम दीनालाल यादव।
0: कितनी उम्र हो गई आपकी?
1: 60 साल।
0: काफी सुंदर भजन आपने गाया है और काफी अच्छी आवाज भी है आपकी
1: जी।
0: कब से आपको ये रुचि हुई है थोड़ा सा बताइए।
1: मैं तो बहुत दिन से 200 साल से गा रहा हूँ, भजन मंडली में बैठते हैं।
0: कौन कौन से भजन गाते हो थोड़ा सा बताइए।
1: रामा अवतारी भी गाते, कृष्ण अवतारी भी गाते, सिंगाजी बाबा की परचरी भी गाते, जस भी गाते।
2: क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम कुसुम सरनकर है और मैं ग्राम बोरी में रहती हूँ।
2: कितने वर्षों से आप खेती कर रही हैं?
3: कम से कम 20-25 साल हो गए।
2: कौन कौन सी फसल लेती हैं?
3: हम लोग गन्ना लेते हैं, धान, मक्का, सोयाबीन। सोयाबीन कम हो रहा है अभी, कम कर दी है सोयाबीन बोना, पर धान और मक्का और गन्ना।
2: तो क्या क्या तैयारी आप कर लेती हैं इसके लिए?
3: जैसे

0: बहुत ही सुंदर भजन श्रोताओं, अभी ग्राम बोरी के मंडल के माध्यम से आपने सुना। बहुत ही अच्छे कलाकार हमारे बीच में यहाँ पर थे। आपका नाम बताइए।
1: मेरा नाम दीनालाल यादव।
0: कितनी उम्र हो गई आपकी?
1: 60 साल।
0: काफी सुंदर भजन आपने गाया है और काफी अच्छी आवाज भी है आपकी
1: जी।
0: कब से आपको ये रुचि हुई है थोड़ा सा बताइए।
1: मैं तो बहुत दिन से 200 साल से गा रहा हूँ, भजन मंडली में बैठते हैं।
0: कौन कौन से भजन गाते हो थोड़ा सा बताइए।
1: रामा अवतारी भी गाते, कृष्ण अवतारी भी गाते, सिंगाजी बाबा की परचरी भी गाते, जस भी गाते।
2: क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम कुसुम सरनकर है और मैं ग्राम बोरी में रहती हूँ।
2: कितने वर्षों से आप खेती कर रही हैं?
3: कम से कम 20-25 साल हो गए।
2: कौन कौन सी फसल लेती हैं?
3: हम लोग गन्ना लेते हैं, धान, मक्का, सोयाबीन। सोयाबीन कम हो रहा है अभी, कम कर दी है सोयाबीन बोना, पर धान और मक्का और गन्ना।
2: तो क्या क्या तैयारी आप कर लेती हैं इसके लिए?
3: जैसे बीज उपचार करते हैं, अभी बीज उपचार करके बोते हैं। और
2: थोड़े रकबे में प्रारंभ करिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। आप देखिए एक महिला हैं, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि भाई खेती करना तो कठिन काम है और नहीं बनेगा, हम लोग तो सिर्फ चौके तक के सीमित है, ऐसा विचार नहीं आया? कैसे आपने सोचा कि नहीं खेती करना चाहिए?
3: हम लोग घर का भी कर लेते हैं और खेत का भी पूरा कर लेते हैं।
2: और कौन सी बहनें आपके संग जुड़ी हुई हैं? क्या नाम है आपका?
3: यशोदा पंडाग्रह।
2: आप कब से खेती कर रही हैं?
3: अभी हो गए 25-30 साल।
2: गन्ना फसल ले रही हैं या फिर सारा सब कुछ लेती है अनाज?
3: पानी नहीं अपने पास में, गेहूँ, मक्का, सोयाबीन, फल्ली, बस यही करते हैं।
0: सीमा दीदी देखिए, यहाँ पर क्या है, ग्राम बोरी जो है ये दूध उत्पादन में काफी अधिक है और यहाँ पे लोग दूध के मामले में ज्यादा रुचि रखते हैं और डेयरी व्यवसाय भी है। दूध उत्पादन में हमारी महिलाएं हैं, वो काफी सशक्त महिलाएं हैं, जुड़ी हुई हैं, तो निश्चित रूप से हम बात करेंगे।
4: प्रमिला पंडोले।
0: आपके घर में कितने पशु है?
4: पशु मेरे यहाँ तो है नहीं, पर आजू बाजू है और गाँव में दूध उत्पादन होता है, वही पशुपालन करते हैं।
0: कैसा लगता है पशुपालन करना?
4: अच्छा लगता है पशुपालन करना। तो
0: एक अतिरिक्त आमदनी के रूप में आय प्राप्त हो जाती है?
4: सुबह आय प्राप्त हो जाती है, दूध लेके जाते और मही भी बनाते, मक्खन बनाते, उसको चारा पानी करते हैं, गाय भैंस को बेचने ले जाते हैं डेयरी पे। 3-4 डेयरी लगती है गांव में, अधिकतर ज्यादा किसानों के यहाँ पे भैंस है, गाय है, खेती का काम ज्यादा करते हैं।
0: बहुत रुचि
4: से काम करते हैं।
0: दूसरी बात ये आती है कि हमारी जो आमदनी के साथ साथ स्वस्थ पोषक जो हमें दूध चाहिए, आज हम देख रहे हैं कि दूध में बहुत सारा मिलावट हमको देखने को मिलता है।
4: शुद्ध दूध मिल जाता है गाय का, भैंस का शुद्ध, रोज ताजा ताजा शाम सुबह, और वो लेके जाते डेयरी पर।
0: कितने घरों में इस प्रकार पशुधन है यहाँ पे?
4: फिर भी यहाँ से तो 80% घरों में होगा सर।
0: 80% लोग पशुपालन करते हैं। बहुत अच्छी बात है सीमा बहन की, जैसे गोबर की खाद की जहाँ हम बात कर रहे हैं, भाई पशु है तो गोबर की खाद है,
4: जैविक,
0: फिर पुनः हम अपनी खेती को जैविक खेती पर लाने की अगर बात करेंगे तो जब तक हमारे पास पशुधन नहीं रहेगा हम जैविक खेती का सपना पूरा नहीं कर पाएंगे।
4: कर रहे हैं, कोई कोई हमारे यहाँ पे भी जैविक वो खाद बनाते हैं, प्राय सभी घरों में तो नहीं, पर कुछ कुछ घर में हो गया है।
0: आप समूह से भी जुड़ी हैं?
4: हाँ सर, समूह।
0: आपके समूह का नाम बताइए।
4: एकता समूह।
0: अच्छा, आपके समूह में क्या कितने सदस्य है, क्या क्या काम हो रहा है अभी?
4: 11 सदस्य हैं हमारे समूह में, मतलब मध्याह्न भोजन का काम मिला है और बाकी कुछ महिलाएं खेती का काम करती है, कुछ महिलाएं दूध मतलब जानवर भी पालती है।
0: हाँ।
4: तो उनका भी दूध उत्पादन भी करती है और खेती करती है, कुछ जैविक खाद का भी काम करती है और समूह में मतलब मध्याह्न भोजन में खाना बनने की जाती है।
0: समूह की क्या रूपरेखा रहती है, कभी मीटिंग वगैरह होती है आपकी, कब कब ऐसा शासन की तरफ से कुछ शेड्यूल?
4: मतलब साप्ताहिक मीटिंग होती है, हम लोग 20 रुपए सप्ताह जमा करते हैं पैसा, और फिर उसी में से अगर किसी महिला को अर्जेंटली जरूरत हो पड़ती है तो उसमें से उसको देना पड़ता है हमको, और फिर नहीं लगता किसी को तो हम लोग ले जाके उसमें बैंक में जमा करते हैं। फिर ज्यादा राशि वाले भी कोई महिला खाद बीज के लिए मांगती है या कोई बच्चों के एडमिशन के लिए या कोई ज्यादा बीमार रहता है उनके लिए मांगते हैं, तो फिर हमको देना पड़ता है उसके लिए।
0: बहुत अच्छी एक पहल है समूह के माध्यम से कि जरूरतमंद लोगों की जो पूर्ति है जो बैंक से ब्याज से उठा करके अपना पूरा करते हैं, तो आपके समूह के माध्यम से भी घर पे ही आप उनको दे करके उनकी जरूरत को पूरा कर देते हैं?
4: हाँ सर जी, घर पे ही, मतलब कोई अर्जेंट ही रहा, एकदम तुरंत ही चाहिए उनको, तो किसी साहूकार के पास नहीं जाना पड़ रहा, बैंक के पास नहीं जाना पड़ रहा, उन लोग हमारे पास में आते हैं, हम लोग उनकी पूर्ति कर देते हैं जो भी है पैसा दे, पैसा मांग।
0: कुछ ब्लॉक स्तर से अधिकारी आपको समझाइश देते हैं?
4: हाँ, ब्लॉक स्तर से भी आते हैं, मतलब यहाँ पे संगठन की मीटिंग होती है।
0: हाँ।
4: 16 से 18 समूह है इस गाँव में, तो अधिकारी लोग भी आते हैं तो उनकी बैठक होती है यहाँ पे, तो वो भी समझाइश देते हैं, और उसमें मतलब ज्यादातर अध्यक्ष, सचिव और समूह की भाइयों को भी बुलाते हैं, वो समझाइश देते हैं।
0: सीमा बहन जी, जैसे कि आज समूह की जो बहनों की हम बात करें तो निश्चित रूप से काफी विकास की ओर अग्रसर हो रही है, आत्मनिर्भर बहनें बन रही है और

0: समय समय पर जब भी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं तो समूह की बहनें उसमें अपनी एक अलग ही भूमिका निभाती है। उनके अनुपस्थिति में शायद कोई काम हो ऐसा मान सकते हम, क्योंकि उनकी उपस्थिति बहुत जरूरी होती है।
1: जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि ये जो बोरी गांव है
0: जी,
1: ये शिक्षा और सशक्तिकरण दोनों ही बिंदुओं को बिल्कुल स्पर्श कर रहा है। एक बहनों का लोग ही सुन रहे
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: तो दिलीपिया, बहुत ही सुमधुर भजन हमारी बहनों ने अभी हमको सुनाया और हमारे श्रोता भी भजन सुन के खुश होंगे। और जैसा अभी हम एक बहन से अपनी बात कर रहे थे कि भाई यहाँ दूध जो है उसका भरपूर उत्पादन होता है, वो डेयरी व्यवसाय कर रही हैं, तो हमारे एक पशुपालक भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं और अब उनसे हम कुछ बातचीत करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे।
1: जी, मैं पूरन यादव, ग्राम बोरीपुर का ही कृषक हूँ।
0: कितने वर्षों से आप पशुपालन कर रहे हैं?
1: मैं लगभग 5-6 वर्षों से पशुपालन कर रहा हूँ।
0: कौन कौन से पशु हैं अभी आपके पास?
1: गाय है, भैंस है।
0: भाई साहब, यहाँ सबसे ज्यादा जब समस्या आती है तो वो चारे की समस्या आती है गर्मी के दिनों में। अब पशुपालन आप कर रहे हैं तो निश्चित ही आप पूरे वर्ष भर के लिए चारे की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था करते होंगे, तो गर्मी में खास करके चारे की व्यवस्था आप कैसे करते हैं?
1: गर्मी में हमने गन्ने के आइट साइड में जो खाली जगह रहती है उसमें नेपियर घास लगाया हुआ है और उससे हम हरा चारा भी ले लेते हैं, और जो गन्ने की सूखी पत्ती निकलती है गन्ने की कटिंग के समय में उसका स्टोर करके रखते हैं। ऐसा करके हम गन्ने इससे चारे की पूर्ति कर लेते हैं।
0: आवास की क्या क्या व्यवस्था आपने करके रखे ताकि आपके जो पशु हैं वो सुरक्षित रहें, किसी बीमारी का संक्रमण उन्हें ना हो पाए?
1: हमने हमारे जो पुराने तरीके से जो कोठा रहता था, गाय का कोठा बोलते थे, ऐसा ही कोठा पीछे बनाया हुआ है, उसमें पानी और चारे की व्यवस्था उचित रखी है।
0: और जैसे कभी आपका कोई पशु बीमार हो जाता है तो फिर उसकी आप चिकित्सा कैसे करते हैं? उसको इलाज के लिए क्या बैतूल ले जाते हैं या फिर यही आपका पशु चिकित्सालय वहाँ दिखाते हैं या फिर कोई घरेलू उपचार आप करते हैं?
1: नहीं, हम जो शासन की योजना चली है जिसके माध्यम से मोबाइल गाड़ी आती है और उनके माध्यम से इलाज करवाते हैं, और प्राइवेट डॉक्टर भी है हमारे यहाँ, तो वो ट्रीटमेंट करते हैं।
0: आपको क्या लगता है कि भाई इस समय जब लोग खेती से पलायन कर रहे हैं, पशुपालन से पलायन कर रहे हैं, तो आपका अपना अनुभव क्या कहता है कि भाई पशुपालन खेती बहुत अच्छा व्यवसाय है?
1: जी, मैं सभी युवा साथियों से यही कहना चाहूंगा कि बाहर न जाकर अगर अपने गाँव में अपन अलग तरीके से, जैसे दूध उत्पादन है और कृषि संबंधित अन्य कार्य बहुत से है, अगर गाँव में करे तो बाहर जाने की हमको जरूरत नहीं है।

0: हम हमारा गुजारा यहाँ अच्छे से कर सकते हैं।
1: ये बहुत अच्छा संदेश है आपका युवा वर्ग के लिए और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिलीप भैया, ये स्थिति हमारे ग्राम बोरी की है, सुखी संपन्न जिसे हम कह सकते हैं वो गांव है यहाँ। तो
2: यहाँ पर एक बात मेरे समझ में आती कि यहाँ पर सब्जी का उत्पादन भी काफी अच्छा होता है और सब्जी उत्पादक किसान महिलाएं भी यहाँ पे हैं, तो सब्जी के विषय में भी हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे।
1: क्या नाम है भाई साहब आपका?
3: मेरा नाम कमलेश तालोने।
1: कौन सी सब्जियों का उत्पादन आप ले रहे हैं?
3: सभी रंग की सब्जियां भी लगा देते हैं खेतों में, जैसे मिर्ची है, भटे है, टमाटर वगैरह वो भी लगा देते हैं।
1: पानी की व्यवस्था है?
3: हाँ, अभी पानी तो अभी तक था पर अब कम हो गया है। अभी मतलब मौसम की वजह से गर्मी ज्यादा पड़ रही है, इसलिए पानी कम हो गया है।
2: अलोनी जी, जैसे कि सब्जी का उत्पादन करने के लिए सबसे पहले क्या तैयारी करना पड़ता है? जैसे कि मान लो हमें कोई सब्जी लगाना है तो उसका मुख्य काम क्या हो जाता है?
3: मुख्य काम तो सबसे पहले तो जमीन को सबसे उपजाऊ मतलब अच्छे तरीके से बनाते हैं
2: जी।
3: तो सब्जी तैयार करने के लिए उसका रोप उपचारित करने के लिए वापे वगैरह बनाते हैं, उसमें खाद डालते, जैविक खाद, गोबर खाद इकट्ठे डालते हैं और वो खाद तैयार करके फिर वाफे बना के उनमें सब्जी का रोपा डालते हैं, फिर उसमें सब्जी लाके और फिर जमीन में जैसे पानी में बोल के उसमें सब्जी।
2: हमारे इस कार्यक्रम में बहुत सारे किसान भाई फसल बीमा और मृदा परीक्षण से भी जुड़े हैं, तो हम बातचीत करते हैं कि फसल बीमा क्या योजना है और इस पे हमारे किसान भाई कैसा लाभ लेते हैं।
4: संतोष यादव।
2: यादव जी, देशीय फसल बीमा योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय उनका एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य है
4: जी,
2: और ये योजना किस हद तक लाभकारी है?
4: ये किसानों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायी है। फसल बोने के पहले अगर हम हमारा बीमा कर ले तो आने वाली जो संकट है, संकट की घड़ी से हमें निपटने का एक बहुत बड़ा सहारा मिल जाता है।
2: और जैसे कि कई बार ऐसा होता है जो प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है
4: जी,
2: तो उसका सर्वे वगैरह भी आपके यहाँ होता होगा?
4: हाँ, सर्वे होता है हमारे यहाँ।
2: अच्छा, उसी अनुपात में फिर ये काम होता
4: है? हाँ, उसी अनुपात से हमें लाभ मिलता है। अगर कहीं कोई इस प्रकार की घटना हो जाती है तो क्षेत्रवार मतलब उसकी समीक्षा की जाती है और उसका आकलन करके हमको उसका लाभ मिलता है, मुआवजा मिलता है।
2: मिट्टी परीक्षण के बारे में बताइए थोड़ा सा, मिट्टी परीक्षण क्या होता है?
4: मिट्टी परीक्षण इसलिए आवश्यक है कि हमें हमारे खेत में किस चीज की जरूरत है। अगर मिट्टी परीक्षण होगा तो हमें उनकी जानकारी होगी। मिट्टी परीक्षण नहीं करवाएंगे तो हमें क्या देना है, क्या अगले आने वाली फसलों को क्या चाहिए, इसका नॉलेज नहीं रहता है, इसलिए मिट्टी परीक्षण जरूरी है।
5: सही पूर्ति हो सके,
4: हाँ,
5: उसकी पूर्ति की जरूरत है
4: जी,
5: इसकी पूर्ति आप कर सके,
4: इसलिए मिट्टी परीक्षण जरूरी है।
2: यहाँ पर अभी शासन स्तर से एक नरवाई प्रबंधन का कार्यक्रम चलाया जा रहा था, तो हमारे बहुत सारे किसानों ने शासन की मंशा को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए नरवाई प्रबंधन में इन्होंने काफी पहल की है। जो जगह जगह पर नरवाई जला देते थे, आज इन कृषक भाइयों ने उसी जमीन को काफी अच्छे से प्रबंधन किया है। बताइए थोड़ा नरवाई प्रबंधन में क्या क्या काम किया?
4: जी, हम ये बताना चाह रहे हैं कि लगभग हमारे यहाँ 5-6 सालों से नरवाई के ऊपर काम चल रहा है। जैसे गन्ने की जो पंसुड़ निकलती है उसको हम वही खेत में मट्टी के द्वारा दबा देते हैं और उसी में गला देते हैं। ऐसा ही गेहूं में जो हार्वेस्टर से जो ये निकलता है उसकी नरवाई, उसको भी प्लाव के माध्यम से वहीं दबा दिया जाता है। और हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से ये प्रयास किया कि हम कभी आग नहीं लगाएंगे।
1: भैया, जैसे हम बातचीत कर रहे थे कि ये जो गाँव है बोरी, ये शिक्षा में, सशक्तिकरण में, खेती में, पशुपालन में, हर चीज में अग्रणी है। और ऐसे ही हमारी एक बिटिया है, उसका MBBS में चयन हुआ। तो बेटा, सबसे पहले तो तुमको बहुत बहुत बधाई। क्या नाम है तुम्हारा?
6: काजल यादव।
1: तो कैसे तैयारी तुमने की थी इसके लिए?
6: आप सभी को मेरा नमस्ते, मैं काजल यादव, मेरे पिताजी का नाम गणेश यादव। मैम, मैंने 11th-12th इंटरमीडिएट किया है तेलंगाना से, वहीं पर मैंने इसके साथ इसकी तैयारी करी थी। उसके बाद मैंने एक और बोर्ड ड्रॉप लिया था, उसके बाद फिर मेरा यूपी में सिलेक्शन हुआ था एक कॉलेज के लिए। मेरा मई में कंप्लीट हुए इंटर्नशिप, एक महीना ही हुआ है मुझे इंटर्नशिप करे हुए। अब फाइनली आई एम अ सर्टिफाइड डॉक्टर काजल यादव। ये वैसे ये तो मेरे पापा का सपना था जो उन्होंने मेरे थ्रू पूरा किया, और इसका पूरा क्रेडिट मेरे पापा को ही जाता है क्योंकि उन्होंने ही करवाया है। मतलब अगर उस टाइम जब मेरा जाना था तब सबका सपोर्ट नहीं था, पर सिर्फ पापा ही खड़े थे, तो उन्होंने, उनकी वजह से ये हो गया। मेरी बाकी बहनें हैं वो भी सब पढ़ रही है। आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगी कि आप, आपके बच्चे या आप कोई भी पढ़ना चाहता है तो प्लीज उनकी हेल्प करें और उन्हें पढ़ाएं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं।
1: उनको हतोत्साहित नहीं करें बच्चों को। बेटा, कई बार ऐसा होता है कि हमारी सोच कुछ और होती है और हमारे माता पिता की सोच कुछ और होती है। जैसा तुमने कहा कि भाई मेरे पिता की बड़ा सपना था डॉक्टर, तो तुम्हारी ऐसा तो नहीं कि भाई डॉक्टर नहीं बनना था, तुमको कुछ और बनना था, या तुम्हारा भी सपना था कि डॉक्टर ही बनना है?

0: मेरे पापा ने हमें फर्स्ट क्लास से यही बोल रहे हैं, मतलब उस टाइम तो इतना नॉलेज भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर वो तब से यही बोल रहे थे कि मैं काजल को डॉक्टर बनाऊंगा. तो मेरा मतलब एक सेकंड थॉट मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि मुझे कुछ और भी करना है, मतलब एक मिनट के लिए भी मैंने कुछ सोचा ही नहीं. मेरे दिमाग में भी फर्स्ट क्लास से यही था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है. पर अब मैं अगर सोचू कि मैं अगर डॉक्टर नहीं होती तो मैं क्या होती, तो मतलब अगर अभी कुछ भी मिल जाए, एनीथिंग, कुछ भी, पर वो नॉन डिजर्वेबल है, क्योंकि मैं डॉक्टर बन के ही खुश हूँ. अगर मैं कुछ और बनती तो मैं इतनी खुश नहीं होती, मैं होती ही नहीं.
1: मतलब तुम्हारा सपना पूरा हुआ है, तुम्हारे पापा का सपना पूरा हुआ, तो निश्चित ही तुम्हारी खुशी जो है वो चार गुनी तो होगी ही. लेकिन जो हमारी बेटियां और हैं जो कई बार हताश हो जाती हैं या उनका एक आध बार में चयन नहीं होता है तो वो हताश हो जाती है, तो तुम्हारा अपना अनुभव क्या रहा और क्या कहना चाहोगी हमारी इन बेटियों से?
0: देखिए, अगर आपने सपना देखा है तो पूरा तो आपको ही करना पड़ेगा. एक बार में नहीं होता है, दो बार में कीजिए, तीन

0: हो रहा है। और इसी के साथ हम अपने सभी किसान भाइयों से लेते हैं विदा। जय राम जी की
1: जय,
2: जय जवान,
1: जय किसान।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बिजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
4: परम तो सब यही डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहा है, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज के जैविक खेती शुरू करूँगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
7: किसान वाणी।

अभी आप सुन रहे थे अन्नदाताओं का कार्यक्रम किसान वाणी। आज इस कार्यक्रम में आपने सुना किसान वाणी गांव में। इसकी स्थल रिकॉर्डिंग की गई थी ग्राम बोरी खुर्द आमला में। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बातें नहीं गीत नए। आज इस कार्यक्रम में पहला गीत आप सुनेंगे सुमेधा करमाहे की आवाज में। इस गीत को लिखा है अलाउ की राही ने, अमजद नदीम का संगीत है और फिल्म का नाम है थ्री स्टोरीज़।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे हिमेश रेशमिया का गाया हुआ। फिल्म का नाम है बैड बॉयज। गीत और संगीत हिमेश रेशमिया का ही है।

कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे सुखविंदर सिंह की आवाज में। फिल्म का नाम है कठपुतली। गीत को लिखा है उमर मलिक ने और डॉक्टर श्रेयस इसके संगीतकार हैं।

कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे दोनों फिल्म का। इसे गाया है अरमान मलिक ने, गीतकार इरशाद कामिल और संगीतकार शंकर एहसान लॉय।

कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे मीत ब्रॉस जोनीता गांधी और जुबिन नौटियाल का गाया हुआ ये गाना। कुमार के बोल हैं और मीत ब्रॉस का संगीत। फिल्म का नाम है ड्रीम गर्ल 2।

फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में अगला गाना आप सुनेंगे गदर 2 फिल्म का, आवाज अरिजीत सिंह की, बोल सईद कादरी की और संगीत मिथुन का।

कार्यक्रम में अंतिम गीत आप सुनेंगे हिमेश रेशमिया और राज बर्मन की आवाज में। बोल शकील आजमी के संगीत हिमेश रेशमिया का, और फिल्म का नाम है मिडिल क्लास लव।

हिमेश रेशमिया और राजबर्मन के गाए मिडिल क्लास लव इस फिल्म के साथ ही कार्यक्रम बातें नई गीत नए अब यहीं संपन्न होता है। आप आकाशवाणी बैतूल सुन रहे हैं, आइए सुने कार्यक्रम युगल गीत। इस कार्यक्रम में पहला गीत आप सुनेंगे मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में, बोल समीर के संगीत आनंद मिलन का, और फिल्म का नाम है आई मिलन की रात।

युगल गीत कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की युगल आवाजों में, बोल समीर के संगीत नदीम श्रवण का, और फिल्म का नाम है आशिकी।

कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे कुमार सानू, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। बोल समीर के संगीत आनंद मिलिंद का और फिल्म का नाम है सुहाग।

कुमार सानू और उदित नारायण के गाए इस प्यारे से गीत के साथ ही कार्यक्रम युगल गीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। चंद लम्हों में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण

0: पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान आईएनएस इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
1: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
2: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है।

0: नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के दो विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के तीन कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न पत्रों से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साय जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
2: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है। हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा

0: मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एबीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने दो दो सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा। और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

श्रोताएं, गीत आपने सुना फिल्म धड़क से। आवाजें अजय गोगावले और श्रेया घोषाल की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत अजय अतुल का।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म ए जेंटलमैन से, आवाजें ऐश किंग और जिगर सरिया की थी। गीत के बोल रफ्तार और सिद्धार्थ मल्होत्रा के, संगीत सचिन जिगर का।

रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
1: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म लखनऊ सेंट्रल से। आवाज अरिजीत सिंह की थी, गीत के बोल कुमार के और संगीत अर्जुन हरजाई का।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म ओके जानू से। आवाज ए आर रहमान श्रीनिधि वेंकटेश की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत ए आर रहमान का।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज एक खास दिन है, एक संगीतकार की याद का दिन, और वो संगीतकार हैं पंचम।

यूं तो आज के फनकार कार्यक्रम में हम आपको किसी गीतकार संगीतकार या किसी कलाकार की पूरी जीवन यात्रा बताते हैं। हम ये बताते हैं कि वो कहाँ पैदा हुए, कैसे उनकी परवरिश हुई और कैसे उनका करियर शुरू हुआ और फिर वो कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। लेकिन आज है पंचम दिवस और पंचम के बारे में हम ये मानकर चलते हैं कि आपको तमाम जानकारियां विविध भारती के इससे पहले के आज के फनकार कार्यक्रमों के जरिए मिल गई होंगी। आज हम आपको सुनवाएंगे दास्ताने पंचम, यानी कैसे पंचम ने अपने गानों की धुनें बनाई। उनके जीवन से जुड़ी बड़ी दिलचस्प घटनाएं भी हम आपको बताएंगे और इसके अलावा पंचम की रचना प्रक्रिया में झांक कर भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दास्ताने पंचम। दरअसल जानी माने संगीतकार आर डी बर्मन का नाम तो पंचम रख दिया गया। वो सचमुच सुरों से सराबोर भी रहे, लेकिन सचिन देव बर्मन बड़े व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने पंचम को कोलकाता में अपनी मम्मी के घर पर रख दिया था, यानी दादी जी ने पंचम की परवरिश की। सचिन देव बर्मन को ज्यादा पता नहीं होता था कि पंचम कर क्या रहे हैं। एक बार एक स्कूल के फंक्शन में एस डी बर्मन को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुला लिया गया और जब स्पेशल गेस्ट के तौर पर वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि पंचम हारमोनिका बजा रहे हैं। उन्हें अपने बेटे की इस प्रतिभा को देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। एक और दिलचस्प घटना हुई थी, एक स्कूल के स्पोर्ट्स फंक्शन में इनाम बांटने के लिए एस डी बर्मन को बुलाया गया। सचिन देव बर्मन इनाम बांट रहे थे तो ऐलान हुआ साइकिलिंग के लिए अवार्ड राहुल देव बर्मन को। अब उनका बेटा ही उनके सामने खड़ा था और साइकिलिंग के लिए वो उसको पुरस्कार दे रहे थे। अगले दिन उन्होंने पंचम को अपने पास बुलाया और बोला, कब से तुम साइकिलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो? पंचम ने जवाब दिया, 8 दिन से। उन्होंने पूछा, ये बताओ तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? पंचम ने जवाब दिया, आपसे बेहतर म्यूजिक डायरेक्टर बनना। ये जवाब सचिन देव बर्मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पंचम को अलग अलग साज सीखने के लिए प्रेरित किया और ब्रिजेन बिस्वास के पास भेज दिया तबला सीखने के लिए। इसके अलावा पंचम को भेजा गया उस्ताद अली अकबर खां और आशीष खां के पास सरोद सीखने के लिए। कई ऐसे गाने हैं जिनमें पंचम ने खुद सरोद बजाया है। एक बार सचिन देव बर्मन इसी तरह से छुट्टियां बिताने के लिए अपनी माँ के पास कोलकाता गए। उन्होंने राहुल देव बर्मन को बुलाया और उनसे कहा कि जरा अपनी मार्कशीट दिखाना। मार्कशीट देखकर वो आग बबूला हो गए, पढ़ाई में इतने कमजोर। उन्होंने तय किया राहुल को मुंबई ले जाएंगे, क्योंकि उनकी भी अब उम्र बढ़ रही है और राहुल को अपने करियर में किसी तरह से एस्टेब्लिश करना है। 10-12 साल में राहुल कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। लेकिन राहुल देव बर्मन की दादी ने इसका विरोध किया। गुस्से में एस डी बर्मन ने वापस मुंबई जाने का फैसला किया। इससे पहले आखिरी बार पंचम को बुलाया और कहा, जरा ये बताओ तुमने कौन कौन सी ट्यून्स बनाई हैं? बस पंचम ने एक के बाद एक 15 धुनें सुना दी। सचिन देव बर्मन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो मुंबई चले गए। एक साल बाद का वक्त, राहुल देव बर्मन कोलकाता के एक थिएटर में फिल्म फंटूश देख रहे थे। अचानक ये गाना

फौरन अपने पिता से संपर्क किया और उनसे कहा कि आपने मेरी ढूंढ चुरा ली। सचिन देव बर्मन बहुत हाजिर जवाब थे। उन्होंने कहा, मैं तो ये टेस्ट कर रहा था कि तेरी धुनें पब्लिक किस तरह से स्वीकार करती है। हो गया ना टेस्ट, तू कामयाब हो गया बेटे, बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा तू। और इस तरह 9 बरस की उम्र में सचिन देव बर्मन ने राहुल देव बर्मन की पहली धुन का इस्तेमाल फिल्म फंटूष में किया था। आर डी बर्मन से जुड़े अनगिनत किस्से हैं। मजेदार बात यह है कि आर डी बर्मन मुंबई जाना चाहते थे और कोई जुगाड़ बन नहीं रही थी। कभी दादी नहीं मानती तो कभी पिता। सन 1955 के दिसंबर की बात है, गुरुदत्त कोलकाता आए। आर डी बर्मन गुरुदत्त से मिले और उनसे निवेदन किया कि मुझे मुंबई ले चलो। बस गुरुदत्त पंचम को मुंबई ले आए और फिल्म प्यासा में पहली बार पंचम ने एस डी बर्मन के असिस्टेंट के रूप में काम किया। उन्होंने एक गाना भी कंपोज किया और गानों में माउथ ऑर्गन भी बजाया और कुछ अन्य इंस्ट्रूमेंट भी बजाए।

ये वो दौर था जब सचिन देव बर्मन अपने इस प्रतिभाशाली बेटे को संगीतकार बनने के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने संगीत निर्देशन की बारीकियां अपने बेटे को सिखाई और उसको ये कहा कि जब कभी भी किसी गाने की धुन बन जाए तो प्रसन्न होने की बात नहीं है, उसे कुछ दिनों के लिए वैसे ही छोड़ दो, उसके बाद दोबारा सुनो। हो सकता है तुम्हें अपने ही काम की कमियां नजर आए, हो सकता है तुम अपनी ही ट्यून को रिजेक्ट कर दो। इस तरह से राहुल देव बर्मन ने अपने पिता से संगीतकारी की बारीकियां सीखी। कई बार राहुल देव बर्मन ने ये अपने इंटरव्यूज में बताया है कि कई धुनें उनके सपने में आई हैं। तो आइए वो गाने सुने जिनकी धुनें राहुल देव बर्मन को सपने में सूझी। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गाना।

एक और दिलचस्प बात है, रोजाना सुबह सचिन देव बर्मन टहलने के लिए जाया करते थे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई उन्हें देख कर फुसफुसाता, देखो देखो सचिन देव बर्मन जा रहे हैं। एक दिन दिलचस्प घटना हुई, एसडी बर्मन टहल रहे थे और पीछे से किसी ने कहा, देखो देखो राहुल देव बर्मन के फादर जा रहे हैं। सचिन देव बर्मन का सीना गर्व से फूल गया। घर जाकर उन्होंने आरडी से ये कहा कि लगता है अब तुम वाकई कामयाब होते चले जा रहे हो।

नासिर हुसैन तीसरी मंजिल बना रहे थे और उसके लिए एक नए संगीतकार की तलाश थी जो अपनी तरह से एक्सपेरिमेंट करे। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने राहुल देव बर्मन को लेने की सिफारिश की। ये वो दौर है जब तीसरी मंजिल के हीरो देव आनंद थे। आगे चलकर किस्मत ने पलटी खाई, देव आनंद इस फिल्म से बाहर हो गए और उनकी जगह शम्मी कपूर आ गए। जब ये खबर राहुल देव बर्मन को मिली तो उन्हें लगा किस्मत ने धोखा दे दिया, ये फिल्म तो अब हाथ से गई, क्योंकि सारी दुनिया जानती थी कि शम्मी कपूर के प्रिय हैं शंकर जयकिशन और शम्मी कपूर और जयकिशन तो बड़े पक्के दोस्त हैं। लेकिन यहाँ किस्मत ने काम किया। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन ने शम्मी कपूर से कहा कि पंचम में बहुत दम है, तुम उसकी धुनें सुनो तो सही। और बस यही हुआ। एक दिन शम्मी कपूर पंचम के पास पहुंचे और बोले, ए पंचम जरा धुनें सुनाओ। जैसे ही दो लाइनें पंचम ने सुनाई तो पता चला कि शम्मी कपूर ने ये गाना दार्जिलिंग में किसी चौकीदार को गाते हुए सुना था। और तुरंत शम्मी कपूर ने रोका और कहा, रुक जाओ, ये धुन तो मैं जयकिशन को देने वाला हूँ। अब पंचम को लगा ये फिल्म मिलने वाली नहीं है। लेकिन धीरे धीरे काम आगे बढ़ता चला गया और हुआ ये कि न केवल नासिर हुसैन खुश हुए पंचम से, बल्कि शम्मी कपूर भी बहुत खुश हो गए। तीसरी मंजिल का जो गाना इस ट्यून पर था वो है ये।

1964 में तीसरी मंजिल आई। इस फिल्म में जैज को बड़ी रचनात्मकता के साथ पंचम ने इस्तेमाल किया था और पंचम के खाते की ये एकमात्र हिट फिल्म थी। जब आराधना का संगीत तैयार हो रहा था तो आरडी बर्मन ने सचिन देव बर्मन की मदद की थी, वो उनके असिस्टेंट के तौर पर रहे थे। शक्ति सामंत को उनका काम अच्छा लगा और उन्होंने फिल्म कटी पतंग उन्हें दे दी थी। कमाल की बात यह है कि कटी पतंग में अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन पंचम ने किया और सही मायनों में अपनी पतंग आसमान में बहुत ऊंचाई पर तान दी।

ये गाना राग खमाज और राग कलावती पर आधारित है, लेकिन इसमें वेस्टर्न म्यूजिक के कॉर्ड्स का अद्भुत संयोजन दिखाई देता है। कमाल की बात यह है कि एक तरफ भारतीय शास्त्रीय संगीत और दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत, दोनों का जबरदस्त संयोजन करने में पंचम बड़े माहिर थे। एक समय की बात है, राजकमल स्टूडियो

हीरोज में पंचम किसी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार कर रहे थे, तभी गुलजार वहां पहुंचे और उन्होंने अपने एक गाने का मुखड़ा पंचम को सौंप दिया। ये गाना था परिचय फिल्म का, मुसाफिर हूँ यारों। गुलजार चले गए, पंचम ने अपना काम जारी रखा। रात हो गई, गुलजार गहरी नींद में सो रहे थे। रात के 1 बजे फोन की घंटी बजी। गुलजार ने उनींदे होकर फोन उठाया तो पंचम थे। कहने लगे, तुरंत नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए ट्यून लेकर आया हूँ। गुलजार नीचे उतरे, पंचम ने गाड़ी में कैसेट प्लेयर पर वो धुन गुलजार को सुनाई और पूरे बांद्रा में ड्राइव करते रहे। बांद्रा मुंबई का एक उपनगर है, आप तो जानते ही हैं। कार के डैशबोर्ड पर रिदम बजाते रहे और इस तरह से उन्होंने गुलजार को अपनी पहली ट्यून गुलजार के लिए जो बनाई थी वो सुनाई। आगे चलकर गुलजार और पंचम ने इतिहास रचा। फिल्म आंधी के लिए संगीत तैयार किया जा रहा था। ये वो दिन थे जब पंचम कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए बांग्ला गाने तैयार कर रहे थे। गीतकार गौरी शंकर ने बहुत ही बढ़िया एक धुन पंचम को दी। पंचम उस पर गाना बना रहे थे, तभी गुलजार को ये धुन पता चली और उन्होंने इस धुन में शब्द पिरो दिए। इस तरह बना फिल्म आंधी का ये अनमोल गाना। तेरे

गुलजार और आरडी बर्मन के बीच हमेशा रचनात्मक चुनौतियां चलती रहती थीं। एक बार गुलजार मेरा कुछ सामान, जो फिल्म इजाजत का मशहूर गाना है, उसकी इबारत लेकर पंचम के पास पहुंचे और कहा इसकी धुन बनानी है। पंचम ने वो पूरी इबारत पढ़ी और गुस्से में कहा, कल को तुम कोई समाचार पत्र मेरे पास ले आओगे और कहोगे कि इसकी भी धुन बना दो, ये भी कोई बात हुई? लेकिन पंचम ने इसी गाने की अनमोल धुन बनाई और गुलजार और आशा भोसले को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ गायिका के राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। एक दिन पंचम गीतकार गुलशन बावरा के घर पहुंचे, कॉल बेल बजाई, दरवाजा गुलशन बावरा की पत्नी अंजू ने खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, पंचम गाने लगे, मक्के की रोटी पकाना अंजू, सरसों का साग पकाना अंजू, और उन्होंने गुलशन बावरा को ये इशारा किया कि यही मेरी धुन है, गाना तैयार करो। वो गाना था ये।

0: आइए अब पंचम के गानों के प्रयोग पर एक नजर डालते हैं, किस तरह से गानों में वो अलग अलग साउंड तैयार करते थे। फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा, जरा इसका ये शुरुआती संगीत सुनिए। ये संगीत दरअसल एक खाली बोतल को फूंक कर निकाला गया है। फिल्म यादों की बारात के मशहूर गाने का ये शुरुआती संगीत। ये संगीत ग्लास को चम्मच से बजाकर निकाला गया है। फिल्म डार्लिंग डार्लिंग का ये गाना सुनिए।
1: hey, भूल गए तुम हमको? याद नहीं क्या तुमको? कल मिले थे हम तुम, आज फिर मिलना था।
0: जब इस गाने के लिए रिदम की जरूरत हुई तो पंचम ने अपने ढोलक और तबला वादक अमृत राव काटकर की शर्ट उतरवा ली और उनकी पीठ पर अपने हाथों से ये रिदम बजाया।

फिल्म चरित्रहीन का ये गाना सुनिए। इस गाने का रिदम उल्टी टिम्पनी यानी केटल ड्रम को पलट कर रख कर बजाया गया है और इस तरह से निकाला गया है। अब जरा ये गाना सुनिए। इस गाने में ये जो रिदम है, इसे सैंड पेपर को घिसकर और बांसों को आपस में टकराकर आवाज तैयार की गई है।

फिल्म पड़ोसन का ये गाना सुनिए। ये जो कंघी की आवाज है ये दरअसल मेटल के बने लैटिन अमेरिकन स्क्रैपर से तैयार की गई है।

पंचम ने हिंदी सिनेमा के गाने तैयार करते हुए कई ऐसी ध्वनियां दी जिनसे पहले न तो संगीतकारों का परिचय था और न ही गाने सुनने वाले इन ध्वनियों को जानते पहचानते थे। पंचम ने तो न जाने किन किन चीजों से ध्वनियां निकाल ली। वो साउंड के सही मायने में जुनूनी थे, मास्टर थे। पंचम को वेस्टर्न म्यूजिक में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि सन 1987 में उन्होंने एक लैटिन अमेरिकन रॉक एल्बम निकाला था जिसका नाम था पंटेरा। हालांकि ये एल्बम 1983-84 में रिकॉर्ड हो चुका था लेकिन इसे रिलीज करने में बहुत वक्त लग गया था। बहुत मन से उन्होंने इस एल्बम को तैयार किया था। वैसे पंचम ने हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी गाने देने का कमाल भी किया। यश चोपड़ा की फिल्म दीवार 1975 में आई थी जिसमें पंचम ने उर्सुला वास से ये गाना गवाया था।

वैसे पंचम ने कई पाश्चात्य धुनों को बहुत अलग अंदाज में अपनी पैकेजिंग के जरिए अपना बनाया, नया रूप दिया और उन्होंने इसे हिंदी में पेश किया। जैसे फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा असल में टेमिस रूसो का बनाया हुआ है और ये एक ट्रेडिशनल साइप्रस ट्यून है। पॉप सिंगर अब्बा का एल्बम आया मामा मियां, इस गाने से प्रेरित होकर पंचम ने बनाया।

इसी तरह से बॉन जोना का एक गाना है, इफ इट इज वेडनेसडे इट मस्ट बी बेल्जियम। इस गाने का हिंदी रूप पंचम ने बनाया फिल्म यादों की बारात में।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने पंचम की गाथा सुनाई, हमने पंचम के कुछ गानों के बनने की कहानी, ध्वनियों के उनके अभिनव प्रयोग भी बताए। पंचम की ये दास्तान कभी खत्म नहीं हो

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार आर डी बर्मन पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार आर डी बर्मन पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा छाया गीत कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा इंतजार।

आकाशवाणी के स्थानीय प्रसारण सेवा का ये बैतूल केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भवन। कार्यक्रम में पहला गीत सुनिए लता जी के स्वर में। गीत को लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने, संगीतकार मदन मोहन, और फिल्म का नाम वो कौन थी।

मन भावन कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है मेरा साया। इस गीत को लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने, संगीतकार हैं मदन मोहन।

कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे लता जी की आवाज में। गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीतकार है रवि और फिल्म का नाम है खानदान।

कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे आपकी परछाइयां, इस फिल्म का आवाज मोहम्मद रफी की, गीतकार राजा मेहंदी अली खान, संगीतकार मदन मोहन।

कार्यक्रम मन भवन में अगला गीत आप सुनेंगे साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ, संगीत रवि का। फिल्म का नाम है वक्त और इस गीत में आवाजें आशा भोसले और महेंद्र कपूर की।

कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे दिल की राहें, इस फिल्म का आवाज लता मंगेशकर की, बोल नक्श लालपुरी के, संगीत मदन मोहन साहब का।

फिल्म ही फिल्म, इसका गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफी, गीता दत्त और आशा भोसले की आवाज में। इंदिवर के बोल शंकर जयकिशन का संगीत है।

0: अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की गाई इस प्यारी सी गजल के साथ ही।
1: वाणी समाचार के साथ में रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक बंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केन्द्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में

0: Arctic efforts. Bahrain reported a drone attack today, calling it a flagrant violation of its sovereignty, while a strike was reported near Erbil in northern Iraq. In southern Lebanon, an Israeli drone strike hit the Nabatea area a day after Israel and Lebanon signed a U.S. brokered framework for Israeli withdrawal and restoring Lebanese state authority. In the FIFA World Cup, Panama will take on England in Group L match at East Rutherford in U.S. tonight. In another Group A fixture, Croatia will face Ghana at Philadelphia in U.S. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी के स्थानीय प्रसारण सेवा का ये बैतूल केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा संपन्न होती है। कल की प्रसारण सभा में सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभरात्रि, जय हिंद।